इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, दुनिया में जब कोई चीज़ पूरी तरह टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं, तो हम मान लेते हैं कि अब इसका दोबारा जुड़ना नामुमकिन है। अगर कोई व्यक्ति बुरी संगत, अवसाद, गलत आदतें या चिंताओं के ऐसे दलदल में फंस जाए जहां उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका हो, तो समाज उस पर यह ठप्पा लगा देता है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, यह खत्म हो चुका है। लेकिन अध्यात्म का नियम दुनिया के नियमों से बिल्कुल उल्टा है। वहाँ कोई भी अंत अंतिम नहीं होता। विदाता के दरबार में एक ऐसा पारस पत्थर है जो राख हो चुके कोयले को भी एक पल में कुंदन बना सकता है। कबीर साहब आज हमें उसी दिव्य संजीवनी बूटी की ताकत दिखा रहे हैं जो मरे हुए को भी नया जीवन दे देती हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह चमत्कारिक और दार्शनिक सूत्र। काटी कुटी माछली छींके धरी छकोह, काटी कुटी माछली छींके धरी छकोह, कोई एक आशीर मन बसया दह में पड़ी बहोह। काटी कुटी माछली छींके धरी चहोह,

0: श्रोताओं, कबीर साहब अपनी प्रसिद्ध उलटबासी शैली में एक असंभव सी दिखने वाली घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं, काटी कुटी मछली एक मछली थी जिसे माया और वासना के शिकार ने पकड़ लिया। उसके टुकड़े टुकड़े करके काटी कुटी यानी पूरी तरह काट डाला, छींके धरी चढ़ोह और उसे पकाने के लिए चूल्हे पर छींके यानी हांडी में चढ़ाकर रख दिया। यानी सांसारिक दृष्टि से उस जीव के बचने की रत्ती भर भी कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। उसका अहंकार और उसका अस्तित्व पूरी तरह खंडित हो चुका था। लेकिन तभी एक महाचमत्कार घटित हुआ। अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, कोई एक आशीर मन बसा, उस कटी हुई मछली के भीतर सद्गुरु के ज्ञान का, उस परमात्मा के नाम का कोई एक आशीर यानी केवल एक अक्षर ऐसा मन में आकर बस गया, दह में पड़ी बहोई कि वह कटी हुई मछली एक ही छलांग में उस कढ़ाई और छीके से निकलकर वापस अपने उसी अताह दह यानी परमात्मा रूपी गहरे मानसरोवर में बहोई यानी वापस जाकुदी और फिर से अमर होकर तैरने लगी। यह दोहा अक्षर ब्रह्म और चेतना के पुनरुत्थान का महासूत्र है। मछली हमारी आत्मा का प्रतीक है जिसे संसार के पांच विकारों काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ने काट कूट कर लहूलुहान कर दिया था और काल की हांडी में पकने के लिए छोड़ दिया था। कबीर समझा रहे हैं कि जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है तब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। तब भी यदि सद्गुरु का एक अक्षर उसके मन में उतर जाए तो वह सोई हुई चेतना को पुनर्जीवित कर देता है। वह जीव माया की कड़ाही से निकलकर सीधे दह यानी ब्रह्मानंद के उस अगाध सागर में लीन हो जाता है जहां मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो अपनी गलतियां, अपने अतीत या अपनी असफलताओं के बोझ तले दबे हुए हैं। सोचते हैं कि उनकी जिंदगी अब संवर नहीं सकती। हम अक्सर अपनी कमजोरियों के आगे घुटने टेक देते हैं। आज कबीर इस सूत्र से भरोसा जगाते हैं और कहते हैं कि आप चाहे कितने ही टूटे हुए क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, अपने भीतर उस एक अक्षर को, उस राम नाम के विश्वास को बसने दीजिए। सद्गुरु के एक छोटे से शब्द में इतना सामर्थ्य है कि वह आपके पूरे जीवन को एक पल में बदल सकता है। अपनी चेतना को इस संसार की कड़ाही से उठाइए और परमात्मा के उस अगाध प्रेम के सागर में छलांग लगाने दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: एपिसोड नंबर 55। बात तगता फैक्ट्स ऑफ एलिगेशन आर प्रूव्ड विद स्पेसिमेंस बट दीज स्पेसिमेंस वर स्पेसिफाइड due to vipassana. It was shown they remain in their own cocoon. It was also said vipassana mars speed and progress. But is it a folly of vipassana? Or who conduct it falsely? No one has checked this with conscience. In fact, vipassana means concentration. Concentration for knowledge. Through full concentration, knowledge is figured out and thoughts take birth. Such creativity means vipassana. Vipassana is not an end, It is a means, it is a way, and it is forgotten. Through vipassana, samyak samadhi is attained without rituals. It contains consciousness, analysis, and wisdom, modesty, compassion. Baba Sahib's studies were for 18 hours. Out of 24 hours of a day, or for 21 hours, this concentrated pursuit of knowledge is also a kind of vipassana. Out of it flourish samyak samadhi. Baba Sahib wiped tears of the afflicted and the unprivileged, and continued to expand his active compassion. Baba Sahib regarded character as the highest virtue. So, no one dared to point the finger at his character, not even of his directors. In his concentration, there are no rituals, no blind beliefs. Specimens of vipassana shut their eyes, ask their gods, "O God, give me this. O God, give me that. O God, give me bungalow. O God, give me vehicle. O God, let my sickness disappear." This greedy beggar's attitude are miles away from science, likewise away from specific kind of looking observation. So these specimens turn vipassana into a kind of ritual and adhere to blind beliefs, become blind followers of religion. So how these specimens can adopt vipassana? Those who defame vipassana, never participated in it due to lack of observation, can never concentrate without a look or observation, take our authority for criticizing unconsciously. Bhatatagata for increasing knowledge and drive away fear factor, you ask to concentrate through observation. For concentration, breathing is an important factor. Every moment originated air enters the body through the nose, finds out carbon dioxide and releases it through the nose. This is called breathing. As per the law of nature, breathing in and breathing out, the process is common among all the living creatures continually. If coming and going of air is connected with seeing, the journey of concentration becomes easy. But apart from taking in and exhaling, the act of seeing is not seen. So there is a lack of concentration, emerge ignorance, blindness and fearfulness due to unawareness. Air entering through the nose provide oxygen to every cell, so every cell remains alive. The cells which don't receive oxygen get diseases like cancer. Every breathing in and accompanied oxygen are so important for the consciousness of body. That means for living alive, observation of this breathing means a record of physical changes. Knowledge enhancing. Body is made up of collection of cells, and cells are made up of atoms and molecules. Kaya Anupassana, how is complete neutral physical observation with perception, with sensations of physical changes that we know through minute observation and concentration. This concentration is attained through anapanasiti, which means mindfulness of breathing or seeing.
3: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM. Always heart-centered.

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे थे खुशी की, और खुशी के इंडेक्स को बहुत अच्छी तरह से जब हम समझ पा रहे हैं, हमने ये समझा कि इस इंडेक्स को हम बहुत आराम से स्टेबिलिटी में ला सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस इंडेक्स को फिर ऊपर फिर नीचे लेकर जाता है, इनको हम साथ साथ मिलकर खंगाल रहे हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछली कड़ी को देखें तो उम्मीदों की बात की थी, और जब हमने कहा कि हम तो कोई उम्मीद किसी से रखते ही नहीं थे, आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू और यू नो लाइक फ्रॉम द सिचुएशन, बट देन वी आर द वंस हु से कि आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। तो अननोइंगली, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती जा रही हैं, जैसे हमने बिलीव सिस्टम से भी बात की थी कि And actually that has helped a lot. I would like to share अपने सभी दर्शकों के साथ की, और आप भी हमें जरूर अपने वो जितने भी experiences हो रहे हैं कि जो feeling जो थी, you remember हमने इस पर बात की थी कि feeling इतनी गहरी हो जाती है और वो हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा thought था। तो वो strong belief system, जैसे ही उस पे हमारी acts गिरनी शुरू होती है, वो काम करने, it is working with me, I hope it's working with you. So amazing like results coming. तो अब हम expectations की बात करें तो वो
1: उसमें भी belief ही है। I expect the world, world means then everything, everyone, to go according to the way I want them to go, you know, to talk the way I want them to talk, to behave the way I want them to behave, to perform the way I want them to perform. तो कहीं ना कहीं मैंने एक belief बना लिया है कि जैसा मैं expect करती हूँ सब कुछ वैसा ही होने लगता है। हम जैसे आपने कहा कि हमें पता थोड़ी है कि हम सच में इतना सारा एक्सपेक्ट करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वो चीज़ वो नहीं होती जो हम एक्सपेक्ट एक्चुअली कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि आई वॉज सिंपल थिंग लाइक आई एक्सपेक्ट दैट मेरे घर में नल में पानी 24 घंटे आएगा। ओके okay? आज सुबह नल खोला एंड पानी नहीं है, रोज मैं ये नहीं सोचती थी आई एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी वाटर, यू डोंट क्रिएट दैट कॉन्शियस थॉट। लेकिन जिस दिन पानी नहीं आया उस दिन हम डिस्टर्ब हो जाते, सुबह सुबह ये क्या ऐसे कैसे हो सकता है, कोई तरीका। दिस डिस्टर्बेंस मीन्स दैट सम एक्सपेक्टेशन ऑफ माइंड हैज नॉट गॉट फुलफिल्ड, दैट्स व्हेन आई गेट डिस्टर्ब। तो एक्सपेक्टेशंस वैसे नहीं पता चलेंगे कि हमारे कितने सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन जब कोई चीज़ हमारे अनुसार नहीं होती तब हमारा डिस्टर्ब होना, अगर हम नहीं डिस्टर्ब हुए, अगर हम नहीं डिस्टर्ब हुए, सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई वॉज एक्सेप्टिंग ईदर वेज, पानी आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, देन देर वॉज नो एक्सपेक्टेशन। लेकिन एक्सपेक्टेशन है ये कैसे पता चलेगा, किसी भी चीज में, परिस्थिति में, दुनिया में, मौसम में और लोगों के साथ, तो ऑफ कोर्स कि अगर मैं डिस्टर्ब होती हूँ तो मेरी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई है। सो यू कैन प्रोबेबली गो बैकवर्ड्स,
0: कि अगर हमें सम डिस्टर्बेंस, कुछ ऐसी बात हुई जो मुझे तंग किया एक, लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ, कुछ तो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, मतलब हम समाज में हैं, सोसाइटी में हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो मेरी एक्सपेक्टेशन और नॉन एक्सपेक्टेशन से परे हैं, यू नो लाइक देयर इज अ फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ,
1: वेयर इज इट रिटन?
0: Uh-huh, but that's what I'm trying
1: that's
0: to
1: That's exactly.
0: Ask.
1: The fixed way of life is what I choose. The fixed way of life is according to my definition of fixed way of life. Code of conduct. Let's say, mere liye code of conduct hai, exact time par pahunchna kahin bhi. Theek hai? Matlab jo time bola hai, usse bhi 5 minute pehle pahunchna. This is my code of conduct. Aapka code of conduct ho sakta hai, kya farak padta hai agar 5-10 minute late pahunche? कभी जल्दी भी पहुंच जाएंगे, कभी ले, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज योर कोड ऑफ कॉन्डक्ट। लेकिन अब आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट और मेरा कोड ऑफ कॉन्डक्ट थोड़ा सा
0: कॉन्फ्लिक्ट में,
1: क्लैश होने वाला है,
0: बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: हाँ, तो ये तो छोटी बात है लेकिन ये होता है, क्योंकि मेरा कोड ऑफ कॉन्डक्ट या मेरे अकॉर्डिंग टू राइट वे ऑफ लिविंग क्या है कि जो कमिट किया वो टाइम पर पहुंचना है। आपका है इट्स ओके, इतनी दूर से हम ट्रैवल करके आ रहे हैं, 10-1 मिनट लेट हो गया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो नाउ इफ आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग यू अकॉर्डिंग टू माय कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ फेयर इज इट?
0: बट अगेन सिस्टर शिवानी, इट बिकम्स देन दो इट लाइक ईच वन ऑफ अस आर गोइंग टू हैव आवर कोड ऑफ कंडक्ट।
1: ईच वन ऑफ अस डज हैव आवर ओन कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आप देखो हम हर एक अपने अपने राइट्स और रॉन्ग्स, इसीलिए हम कहते हैं ना राइट और रॉन्ग क्यों रिलेटिव है, हर एक ने अपनी राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन अपने अनुसार क्रिएट की हुई है।
0: वो भी हमने तब तैयार की ना जब हम एक पूरे समाज में परिवार में बढ़ते हुए अपने देखते हुए आ रहे थे। मर्यादाओं की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, या कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात करते हैं, वो हमने उस तरह से डेवलप किया।
1: उस तरह से वो सारी चीजें जो आपने कहा, समाज, हमारा कास्ट, हमारी फैमिली, वो इन्फ्लुएंसेस हैं उसके ऊपर। डेफिनेटली आप जिस कंट्री में हैं, आप जिस कास्ट को बिलोंग करते, दोज आर ऑल इन्फ्लुएंसेस। But suppose आप पंजाबी हैं, does it mean all Punjabis have the same code of conduct?
0: No.
1: आप इंडियन हैं, आप इंडिया में रहते हैं, do all Indians have the same code of conduct? No. Do all Indians, may Punjabis all have the same code of conduct? No. So it's not, okay, in India, in Punjabi, in everyone in your family, do they all have the same code of conduct?
0: No.
1: So again, सारा जो कल्चर का इन्फ्लुएंस भी अगर हम लें, कि देश का, कास्ट का, परिवार का भी ले लें, जो बड़ी फैमिली छोड़ो, हमारे छोटे से परिवार में चार लोग हैं, डज एवरीवन हैव द सेम कोड ऑफ
0: नो, डिफरेंट एथिक्स, डिफरेंट थॉट प्रोसेस।
1: तो हमारे कास्ट और कल्चर का, अगर हम घर में चार हैं तो चारों के ऊपर उसका थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन फिर हर एक ने अपना अपना
0: अपना अपना तय कैसे किया है।
1: आपके पास कभी भी ये नहीं होगा कि सारे एक ही थॉट के साथ चले, आप कभी भी नहीं कर सकते हो। इट विल नेवर बी, बिकॉज एवरीवन इज यूजिंग देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग। तो कभी ये नहीं होगा। सी, एक्सपेक्टेशन मींस माय एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू मींस कि जैसी मेरी सोच है आपकी सोच भी
0: वैसे होनी चाहिए।
1: यही तो है ना एक्सपेक्टेशन, कि जो मेरी सोच है आपकी सोच भी सेम होनी चाहिए। आई डोंट थिंक दिस विल एवर बी पॉसिबल। फॉरगेट सारे एक सोसाइटी के अंदर, हम दो लोगों की सोच भी सेम कैसे हो सकती है? कभी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर भी, एक पर्टिकुलर इश्यू को भी लेकर दो लोगों की सोच कहाँ सेम होती है? दे विल ऑलवेज बी
0: Difference.
1: A little difference. And expectation means कि मैं एक्सपेक्ट करूँ आपकी सोच मेरी जैसी हो। Difficult. Acceptance means I accept कि आपकी और मेरी सोच
0: different है। In fact, yes, I think क्योंकि expect करके भी या ये मान के भी तो disturbance मुझे आनी है।
1: It's easier नहीं, there is no other solution. हमने जितना expectation,
0: हम change तो बच्चों को change, बच्चों को सही code of conduct, बच्चों को सही तरीका कि ये चीजें करनी ही चाहिए।
1: But which is very important. It doesn't see. एक है expectation, एक है किसी को आप अपना opinion दें, किसी को आप अपने point of view से right और wrong बताएं। आपका जो role है, आप सीनियर हैं, आप पेरेंट हैं, आप टीचर हैं, दैट्स योर रोल। व्हाई इवन अमंगस्ट फ्रेंड्स, आपको अगर कुछ राइट लगता आप शेयर कर सकते हैं। डू यू नो समथिंग, आई फील यू कुड डू इट लाइक दिस, बट सेइंग आई एक्सपेक्ट यू टू डू इट लाइक दिस मींस आई एम एक्चुअली सेइंग यू बेटर डू इट लाइक दिस। देयर इज अ डिफरेंस,
0: एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट लाइक दिस, इट मींस यू एंड यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, यू नो यू आर नॉट राइट।
1: तो वो फर्क है। तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, यस, पेरेंट्स बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से रखते, लेकिन उसमें क्या है कि एक एक बार जबकि वो बच्चा उस एक्सपेक्टेशन को नहीं मीट कर पाता, तो पेरेंट्स क्या हो रहे हैं?
0: हर्ट
1: हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत लेट डाउन फील करते हैं कि मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया। अब एक्सपेक्टेशन हमने ही रखी, लेट्स से मैंने एक्सपेक्टेशन रखी कि आपके 90% आए बच्चे के, या वो डॉक्टर बने या व्हाटएवर, मैंने एक्सपेक्टेशन रखी, वो नहीं कर पाया। मैंने रखी एक्सपेक्टेशन, वो नहीं कर पाया, मैं हर्ट हो गई, डिजेक्टेड हो गई, मैंने इतना कुछ उस प्रोसेस में कह दिया उसको, तो हमारा रिश्ता क्या हुआ? ये एक्सपेक्टेशन किसने रखी थी? मैंने ही रख ली थी। डिड द चाइल्ड से that yes I will be able, and sometimes even if the child has said that yes, you know, I will
0: there
1: do this
0: much, things, you know, other factors which take over.
1: दूसरों को क्यों हम बहुत देखें? अपने बारे में क्या? Am I able to meet up to my expectations?
0: Oh yes.
1: आज हम कहते, आज मैं सारा दिन में ये करूँगा। Am I always able to do it? तो खुद के expectations नहीं meet up कर पाते, तो हमारे पास बहुत सारे excuses होते। वो आपको पता है, ऐसा हो गया, so I couldn't do it. मैं तो पढ़ कर गया था, teacher नहीं ठीक से।
0: लेकिन कई बार तो हम नहीं अगर कर पाते, तो हम अपने आप से भी इतने dejected हो जाते हैं, जैसे हम बच्चों से होते हैं या बाकियों से होते हैं। What I want to ask actually is, what is the way out?
1: लोगों को, on a society at large, बच्चों को, घर के अंदर, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे लिए राइट क्यों है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और मुझे वो करने के लिए सशक्त बनाया जाए। आई नीड टू बी एम्पावर्ड, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, फुल स्टॉप। इट्स लाइक अ कोड, यू नो, जो इन्फोर्स कर दिया जाता है दूसरे के ऊपर, अगर दूसरा उसको स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है, या दूसरे की एप्टीट्यूड ही नहीं है उतना करने की, दूसरे की कैपेसिटी ही नहीं है करने के लिए, वो नहीं कर पाएगा. एंड देन आई विल से आई एक्सपेक्टेड यू टू डू दिस, लेकिन तो आप
0: नहीं. तो फिर जैसे एक, जैसे हमने कहा कि एक कंट्री के अपने लॉ है, सिमिलरली घरों में भी कुछ लॉज होते हैं.
1: यस.
0: तो वो लॉज को अगर, इवन इफ एज अ चाइल्ड आई डोंट फील कंफर्टेबल अबाउट इट, व्हाट शुड आई डू? यू नो, लाइक
1: दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव टू फर्स्ट, जो घर में हम बना रहे हैं, चलो देश के लॉज हम इकट्ठे मिलकर नहीं बना सकते, घर के तो बना सकते हैं. जितना हरेक की अपनी कंफर्ट लेवल उसमें देखी जाएगी लॉ बनाते टाइम, उतना लॉ को फॉलो करना easier हो जाएगा. Then I will never break the law. See, if I'm, अगर आपने घर में एक रूल बनाया, सपोज कि 2 घंटा टीवी देखेंगे, लेकिन अगर सबने मिलकर ये रूल बनाया होगा, तो आप घर में हो या नहीं हो, बच्चे फिर भी टीवी नहीं देखेंगे. लेकिन अगर आपने आपने अकेले ने रूल बना दिया कि 2 घंटा ही टीवी देखना है, बस आई एक्सपेक्ट दैट यू विल नॉट वॉच एनी मोर. अब आप जिस दिन घर पे नहीं है,
0: वो पूरा दिन देखेंगे. और आप जब ऑफिस से आते हैं, आप तो कंटिन्यूस टीवी देखते हैं, आप संडे को होते हैं, सैटरडे को घर होते हैं, आप पूरा टाइम टीवी.
1: सो जब हम कुछ ऐसे रूल्स भी बनाएं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इवन इन एन कंपनी, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन ट्राई, जितना हरेक जुड़ता है उसको बनाने में, हरेक कंफर्टेबल फील करता है, या हमने ये बनाया है, मुझे ये करना है. सी आज घर में क्या हो रहा है, बच्चे ये कहते हैं मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए ये करना पड़ रहा है. दिस इज़ नॉट अ वेरी नाइस फीलिंग कि मुझे किसी और के लिए ये करना है, तो वो मुझे एक यू नो बंधन जैसा फील करता है. और ये कहना कि मुझे किसी और के लिए करना पड़ रहा है, इट मीन्स मैं नहीं करना चाहती, मुझे किसी और के लिए करना पड़ रहा है. या तो फिर मैं कहती ना मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम डूइंग इट, नो आई एम डूइंग दिस फॉर माय पेरेंट्स.
0: इनफैक्ट अगर हम देखें, आई जस्ट रियलाइज, यू नो, एक वन थॉट विच केम कि मुझे जब काम करवाना पड़ता है एज अ मदर ऑल्सो, और अगर मैं बॉस के रूप में सोचूं, अगर मैंने, मतलब वो करवाना भी बड़ा मुश्किल होता है. यू नो, जो रूल्स और वो तय किए हुए हैं, अगर हम सबकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअली लेकर रूल्स बनाएं, तो हमें वो एनफोर्स नहीं करने पड़ेंगे,
1: वो नेचुरल हो जाएगा.
0: हाँ.
1: क्योंकि अगर घर में, स्टार्ट विद द हाउस, फिर ऑफिस में नेक्स्ट स्टेप पर देखते, लेकिन अगर घर में

0: पैकर्स गवर्नमेंट ने कहा अच्छा नहीं है, प्लास्टिक दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा अच्छा नहीं है, हमारे से ज्यादा अच्छे तो बच्चे फॉलो कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको स्कूल में वो समझाया गया, उसका डैमेज पता, एंड चिल्ड्रन आर वेरी गुड विद इट.
1: दे वर एम्पावर्ड, यू नो, दे वर अलाउड टू टेक डिसीजंस. एक्चुअली दे वर ट्रीटेड एज एडल्ट्स.
0: एब्सोल्युटली, एंड दे लाइक दैट. एवरीवन लाइक्स दैट कि अच्छा मुझे समझाया गया और फिर मुझे बताया गया आपको क्या. सी, नो वन सेड बैन क्रैकर्स. अगर आप घर में बोल देते चाहे कुछ भी हो जाए पटाखे नहीं चलने, कोई नहीं मानेगा. बच्चा जाके छुप कर करेगा, फ्रेंड्स के साथ.
1: सबसे ज्यादा तो स्कूल में चलाते थे बच्चे, छुप छुप के जो चलाते थे. एंड इनफैक्ट अमेजिंग, यू नो, हाउ इट हैज हैपेंड.
0: एब्सोल्युटली. तो जहां उनको अवेयरनेस क्रिएट की गई, उसके राइट्स और रॉन्ग्स पता चले, और फिर उनको बताया गया आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए. द डिसीजन केम फ्रॉम द चिल्ड्रन. इट वॉज नॉट आपको ये नहीं करना है, इट वॉज आपको क्या लगता क्या करना चाहिए. द चिल्ड्रन आर वेरी मैच्योर. आप एक छोटे बच्चे को भी, 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे को उसके लेवल की बात अगर करेंगे ना, द चाइल्ड नोज वॉट इज राइट एंड रॉन्ग. अगर चाइल्ड रॉन्ग कुछ कर भी रहा है, यू टॉक टू हिम एज एन अडल्ट इंस्टेड ऑफ सेइंग ये नहीं करना है, ही विल नॉट लाइक इट. वो फिर भी करेगा क्योंकि अभी तक उसने नहीं एक्सेप्ट किया है. एंड तब वो कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट, आप बार बार बोलो नहीं करना है, फिर वो बार बार कर रहा है, फिर आप बार बार बोलो, और आप कितना बोलेंगे. और आज का एनवायरनमेंट ऐसे हो गया है कि फिर हम बहुत ज्यादा, हमें चेक रखना पड़ता है बच्चों पर. ठीक है, घर पे आपने कोई चीज फोर्स कर दी, ये मत पढ़ो, ये मत देखो, इन लोगों से ऐसी बात मत करो ना, वट एवर, क्योंकि हम कहते हैं आजकल बहुत कुछ हो रहा है सोसाइटी में. बाहर जाने के बाद आप क्या करेंगे? कैन यू चेक? वो बच्चा कंप्यूटर पर बैठा है, कैन यू चेक एवरी टाइम? आप कितना टाइम खड़े रहेंगे चेक करने के लिए कि वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा? That will not be the way. And जितना आप इस तरह से forcefully rule impose करेंगे, उनके अंदर और भी ज़्यादा आएगा कि हमें वो करना है. लेकिन understanding के साथ, awareness के साथ और maturity के साथ discuss करेंगे and then empower करेंगे, फिर वो खुद अपना, उसको अपने code of conduct में डालेंगे. You know, एक है मैं आपका code of conduct follow करूँ, लेकिन एक है आपका code of conduct मेरे code of conduct की list में आ जाए, तो फिर फॉलो करना मेरे
1: आसान हो जाएगा. और सबसे बड़ी बात है, वो उसका हुआ ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ खत्म हो जाएगी.
0: तो कितनी सारी चीजें हो गई. एक तो मैंने आपके कोड ऑफ कॉन्डक्ट को समझा, अपनाया. मेन चीज है मुझे उसे अपनाना है. एक बार मैंने अपनाया, मैंने अपने लिए उसको किया क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता है. और दूसरा, अगर मैं नहीं भी बाय चांस कर पाई, आप हर्ट नहीं होंगे क्योंकि मैं आपके लिए नहीं कर रहे थे. आई एम डूइंग दिस नाउ फॉर माई सेल्फ एंड नीदर विल आई बी अंडर द प्रेशर. यू नो, ये प्रेशर है बहुत ज्यादा, हस्बैंड वाइफ का, पेरेंट्स बच्चों का, बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर के अंडर है. आई हैव टू डू दिस फॉर माई पेरेंट्स. तो प्रेशर के अंडर परफॉर्मेंस. एंड इसमें भी अगर हम एक चीज देखें कि औरों से एक्सपेक्टेशंस तो चलो देखते करने या नहीं करने, अपने से एक्सपेक्टेशंस, अपने से तो एक्सपेक्टेशंस रखें ना. इफ आई कैन एक्सपेक्ट के यू डू व्हाट आई वांट, व्हाट अबाउट मी एक्सपेक्टिंग दैट
1: आई शुड डू व्हाट आई वांट.
0: एंड जब अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट हम बनाते, तो उसमें भी हमारी एक्सपेक्टेशंस यही हैं अपने आप से, मैं सारा अपना काम खत्म कर लूँ, आई एम अ गुड पेरेंट, मेरे बच्चों को ये करा दो, वो भी सेकेंडरी है. जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट बनाएं, क्योंकि हमें बहुत आदत है एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट में हमारी फर्स्ट जो अपने आप से होनी चाहिए वो है हैप्पीनेस.
1: Whether I'm happy or not.
0: Yeah, what about that? Because ये सारी जो एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट है, आप ऐसा करो, आप ऐसा बोलो, मौसम ठीक रहे, ट्रैफिक, ये इसलिए है सारा कुछ क्योंकि ये सब चीजें जब होंगी तो मेरा मन कैसा रहेगा?
1: छात्र.
0: जब कोई भी इनमें से चीज डिस्टर्ब होती है तब मेरा मन डिस्टर्ब होता है.
1: नलके में से पानी नहीं आना
0: तो मैं डिस्टर्ब हुई ना,
1: मेजरली
0: आई गॉट डिस्टर्ब. दैट्स व्हाई आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पानी आना चाहिए, क्योंकि पानी आता तो मैं ठीक रहती.
1: तो नॉर्मल रहता ना, ठीक, मतलब पता भी नहीं चलता कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था.
0: सो नाउ लेट्स पुट ऑन आवर एक्सपेक्टेशन लिस्ट. सबसे पहले कि मेरी अपने से क्या अपेक्षाएं हैं. मेरी अपने आप से अपेक्षाएं हैं खुशी, शांति, स्टेबिलिटी. इसको फर्स्ट रखते, बाकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी उसके बाद रखते. तो उसमें क्या होगा, एक है आपने मेरे से ठीक से नहीं बात की, तो यू हैव नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. लेकिन उससे पहले मुझे ये याद रखना है कि मेरी अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है, कि मुझे स्टेबल रखना रहना है. सो एम आई अलाउड टू गेट डिस्टर्ब जब आपने मुझसे बात नहीं की?
1: लेकिन एक बात है, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इज गोइंग टू टेक, बिकॉज अगर पानी नहीं आया

0: या ड्राइवर नहीं पहुंचा, तो पहला जो रिएक्शन है या पहला जो क्रिएशन है, ऑफ कोर्स नाउ आई स्टार्टेड सेइंग क्रिएशन, इज डिस्टर्बेंस
1: तो क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन सबसे रख रहे हो एक्सेप्ट फॉर
0: फ्रॉम योर
1: योरसेल्फ. बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है ना, उनमें एक और ऐड करते हैं ऊपर कि फर्स्ट एक्सपेक्टेशन जो मेरी है वो ये कि चाहे कुछ भी हो जाए पहले
0: मैं
1: मुझे
0: खुश
1: ठीक
0: रहूं.
1: रहना है, मुझे
0: कैसे
1: ठीक.
0: याद रखें, ये
1: ये
0: कैसे
1: धीरे धीरे
0: करें?
1: आपके बिलीफ सिस्टम में फिट होगा ना. बिलीफ सिस्टम्स को ही तो रिप्लेस कर रहे हैं ना. सो और उसमें भी क्या बिलीफ सिस्टम ये है कि मैं हूँ ही स्टेबल, मुझे स्टेबल होना नहीं है, मैं हूँ ही स्टेबल. तो पहले मुझे सिर्फ किसका ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है और अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करना है कि दूसरे मेरे अनुसार
0: काम नहीं
1: करने वाले
0: करेंगे,
1: नहीं है, चलने वाले नहीं है, व्यवहार करने वाले
0: कभी भी कुछ भी
1: नहीं.
0: हो सकता है. यू नो, अगेन इट मीन्स दैट वेन एवर द सिचुएशन विल कम, दिस बिलीफ सिस्टम शुड पॉप अप ऑन द स्क्रीन, ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन, आई एम स्टेबल.
1: इट इज, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट्स द ओनली थिंग विच हेल्प्स मी क्रॉस एवरी सीन. क्योंकि होता क्या, एक्सपेक्टेशंस रखना मीन्स क्या, मैं अपनी सोच के अनुसार एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ. सी एक्सपेक्टेशन सारे मेरी एक पर्टिकुलर सोच है, मेरे एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम है और मैं समझती हूँ सब लोगों को वही बिलीफ सिस्टम से चलना चाहिए क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम
0: ठीक है.
1: ठीक है. क्योंकि मैं तो ठीक ही हूँ ना, मेरा गलत होना तो वो तो आई नेवर थॉट अबाउट इट. तो मैं ठीक हूँ, मेरा बिलीफ ठीक है, तो सबको उसी बिलीफ के अनुसार चलना चाहिए. हाउ इज दिस एवर पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है. तो हम ही असंभव चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एवरीवन शुड गो अकॉर्डिंग टू माय बिलीफ और फिर हम इम्पॉसिबल एक्सपेक्ट करके जब वो नहीं पूरा होता तो हम डिस्टर्ब होते और जैसे ही हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती फिर हम डिस्टर्ब होते,
0: दिस इज मेजर
1: फिर
0: फैक्टर.
1: हम जजमेंटल भी होते क्योंकि
0: ओ यस.
1: यू नो सारी कितनी इंटीग्रेटेड हो जाती हैं चीज. मैंने एक्सपेक्टेशन रखी कि आप मुझसे स्वीटली बात करेंगे, अब आपने नहीं की ड्यू टू सो मेनी फैक्टर्स. आज आपका मूड ठीक नहीं है, आज आपका मन नहीं
0: या
1: किया
0: हो सकता है
1: या
0: मेरे मन में कोई और
1: कुछ
0: बात
1: और
0: आपसे
1: बात
0: जुड़ी,
1: हो,
0: किसी ने कुछ कहा है मुझे आपके
1: या
0: लिए, यू नो,
1: कुछ भी हो
0: कुछ भी
1: सकता
0: हो
1: है,
0: सकता
1: कुछ भी
0: है.
1: हो सकता है. लेकिन मैंने एक्सपेक्ट क्या किया था कि आप मेरे से दिस पर्टिकुलर व्यवहार से करेंगे, आपने नहीं किया, तुरंत मैं क्या हो जाऊंगी, आपके प्रति जजमेंटल, आपके प्रति क्रिटिकल. फिर वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा, वाणी में आएगा, फिर वो सिर्फ आपको नहीं बोलूंगी और
0: सब जगह
1: सो मच
0: और पूरा
1: जस्ट
0: टाइम
1: गोस.
0: रहेगा जब तक, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल आएगा जब तक मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर दूंगी, तब तक वो मेरे साथ थॉट रहता रहेगा.
1: क्योंकि हमने जजमेंट क्या पास करनी है. सी मेरा बिलीफ ये है, आपने वो बिलीफ फॉलो नहीं किया, तो मैंने जजमेंट सिर्फ एक ही तो पास करनी है कि आप गलत हैं. वो तो मुझे पहले से ही पता था. सी द मिनट समवन इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू माय बिलीफ, माय थॉट, माय वे ऑफ वर्किंग, मुझे जजमेंट सिर्फ यही पास करना है, मैं सही हूँ, दूसरे
0: गलत है.
1: गलत है. यही तो हम सारा दिन कर रहे हैं. आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, जैसा आप बोल रहे हो वो रॉन्ग, जैसा आप काम कर रहे हो वो. वी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट के हर एक का काम करने का अपना अपना तरीका है, हर एक अपने एप्टीट्यूड से, अपने स्किल से, अपनी सिंसियरिटी लेवल से. सी इवन सिंसियरिटी, हमारी वैल्यूज भी कई बार हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है जब हम उसको एक्सपेक्टेशन के साथ जोड़ते हैं. सपोज वन पर्टिकुलर पर्सन ऑफिस में बहुत सिंसियर है, वो दिन रात काम करता है, सिंसियरिटी उसकी वैल्यू है, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी उसकी वैल्यू है, वो कभी हमेशा सच बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता. लेकिन फिर वो ये एक्सपेक्ट करते
0: कि सब लोग कुछ
1: कि
0: सच
1: सब लोग
0: बोलें.
1: ऐसे होंगे. अब नाउ वो ही वैल्यू फिर उसके लिए डिस्टरबेंस का कारण बन जाती, क्योंकि जब भी कोई उतनी सिंसियरिटी से काम नहीं करेगा, जब भी कोई उतनी ऑनेस्टी से बिहेव नहीं करेगा, जो कि होने वाला, बिकॉज एवरी वन इज डिफरेंट, तो आई एम गोइंग टू गो लाइक दिस. सो एक्सपेक्टेशन मीन्स क्या, जैसे हम हैं,
0: वैसे होना
1: जैसी
0: चाहिए.
1: हमारी सोच है, सारे लोग वैसे ही चलने वाले हैं, ये कभी नहीं होना होने वाला है. सो द सूनर वी कैन लर्न, यू नो दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग, कि जैसे ही आप डिस्टर्ब होते हैं चेक करें कि किससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आज. यू नो अगर हम एक चीज ट्राई करें, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, कि अगर आपको कोई बात लगती कि वो सही है, यू आर वेरी श्योर कि ये सही है, शेयर इट दूसरे के साथ, आप शेयर करें, बच्चे के साथ शेयर करें, लेकिन सिर्फ अपने आप को ये याद दिला दें कि अगर वो पूरा नहीं कर पाएगा मैं हर्ट नहीं होंगी, बस इतना रखना है.
0: पूरा भी नहीं, रिजेक्ट भी कम्प्लीटली करते
1: जो भी, मतलब हाँ. उसको वो नहीं अगर अपने जीवन में करते मैं हर्ट नहीं होंगी, तो उससे क्या होगा, आप अपनी वो राइट बात आप कहते जाओ, बताते जाओ विदाउट गेटिंग हर्ट डिजेक्टेड. धीरे धीरे यू विल फाइंड द अदर पर्सन एक्सेप्टिंग व्हाट यू हैव टू से. क्यों वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि पहले हमने उनको एक्सेप्ट किया. तो जैसे हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे तो धीरे धीरे वो भी फिर हमें एक्सेप्ट कर लेंगे. और वो जो बात हम उन्हें कह रहे, दिस इज कॉल्ड एम्पावरमेंट. दूसरे को एक्सेप्ट करना मतलब एक्सेप्टेंस की एनर्जी होती है, एम्पावरिंग एनर्जी, सशक्त करना. और रिजेक्शन की एनर्जी वो दूसरे को और नीचे, और दूसरा परे हट जाता है, मुझे करना ही नहीं है, मेरे से नहीं होगा, आई कैन डू व्हाट यू वांट मी टू डू. बट इफ यू गिव दिस एक्सेप्टेंस एनर्जी, उनके अंदर वो ताकत आ जाती है, वो करके दिखाएंगे व्हाट यू वांट देम टू डू. तो एक्सपेक्टेशंस, यस, वेरी डिफिकल्ट एकदम से लेट गो करना, लेकिन ये तो ध्यान रख सकते कि
0: मेरे को
1: डिस्टर्ब नहीं होना है.
0: यू नो,
1: सबसे पहली एक्सपेक्टेशन पहले पूरी करनी है अपनी वाली,
0: अपने आप से. एक्चुअली इट्स अमेजिंग, यू नो, हम जैसे बिलीफ सिस्टम पर काम करते आ रहे हैं, वैसे ही ये मेजर छोटी छोटी बातों की जो एक्सपेक्टेशंस है हमसे, कि वही नल में पानी नहीं आया, या बच्चा ऐसे ही बिहेव करेगा, या मेरा सबॉर्डिनेट जो है ही हैज टू परफॉर्म दिस वे, दैट इज वो प्रैक्टिकल हो सकता है. यू नो, अगेन ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर होता है कि मेरा ऑफिस है, मेरा प्रोजेक्ट है, परफॉर्मेंस हैज टू बी दिस वे. तो उसमें फिर हम क्या अपने आप को लॉजिक दे सकते हैं?
1: उसमें हम ये कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं, या हमारे जूनियर्स भी अगर हैं, हर एक का अपना अपना एप्टीट्यूड है, स्किल है. मैं सीनियर पोजीशन पर अगर हूँ तो मैं सीनियर पर इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे अंदर कोई विशेषता है. लेकिन आपकी सारे टैलेंट्स और स्किल्स के साथ एक सीनियर के अंदर जो सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि उनके साथ या उनके अंडर काम करने वाले लोगों की क्वालिटी को, टैलेंट को बढ़ाना. लेकिन हम सोचते नहीं, जो मेरा स्किल है उनका भी ऑटोमेटिकली उसी लेवल का होना चाहिए. दैट्स नॉट नेसेसरी पॉसिबल. एंड कई बार ये भी हो सकता कि जो हमारे जूनियर हैं उनको कोई ऐसी चीज, उनका स्किल हमारे से भी बेटर हो सकता, लेकिन अगर हमने उनको कहा कि आप मेरा वाला तरीका ही करो, तो कई बार हम दूसरे की क्रिएटिविटी को डैम्पन कर देते हैं और वर्क एफिशिएंसी पर भी उसका
0: यही बात है कि जितने भी हम देखते हैं एग्जांपल्स जहां बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए, वो तभी हो पाया जब टीम ने लीडर की विजन को अपनी विजन बनाया. यू नो, नाउ इवन इफ देयर इज समबडी जो नहीं उसे एक्सेप्ट कर पा रहा या नहीं उसको मीट कर पा रहा, इट्स परफेक्टली फाइन. यू नो,
1: एंड व्हेन आई रिमेन हैप्पी, वो जो नहीं मीट कर पा रहा वो भी कर लेगा, क्योंकि हम उनको वो ताकत, ये हम अगर याद रखें, ये बहुत बड़ा मंत्र है. यू नो, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल विद विच वी कैन एम्पावर पीपल अराउंड अस. माय नॉट गेटिंग डिस्टर्ब्ड एम्पावर्स अदर्स, बिकॉज आई एक्सेप्ट देम, दे एक्सेप्ट देमसेल्व्स, एंड देन दे एक्सेप्ट मी. दैट्स द वे एनर्जी फ्लोज.
0: ब्यूटिफुल. इनफैक्ट दिस इज अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम विच वी हैव टू स्टार्ट इंटीग्रेटिंग. अपना सुबह का पहला कागज पे जो पहला लाइन हम लिखेंगे वो यही कि I expect from myself to remain happy, you know, not to get disturbed. ये अगर हम पहला, तो हमारा इंडेक्स फिर नहीं होने वाला जब तक हमें ये याद रहेगा. सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच.
1: ओम शांति.
0: और अपने ओम शांति अपने सभी दर्शकों से भी आप विदा लेते हैं, लेकिन बार बार यही बात आती है कि जब देखना शुरू करते हैं, एक्चुअली इट्स अमेजिंग, यू नो, जब हमने देखना शुरू किया, जब अपने काम करना शुरू कर दिया, अपने पर समझा, उसको इम्प्लीमेंट करने लग गए, तो प्रोजेक्ट जो है वो ज़रूर सक्सेसफुल हो रहा है. तो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स का जो प्रोजेक्ट है वो इन दिनों खूब तेज़ी पर है. वो एक स्टेबिलिटी को, जिसको हम जिस लेवल पर लेकर आना चाहते हैं, वहाँ पर बिल्कुल पहुँचता जा रहा है. लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी बातें अगर अभी भी हैं जो उसको डिस्टर्ब करती हैं, आपको बिल्कुल स्वागत करते हैं. आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01244-266-7999-344-555-9999-344-666-9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. Awakening with Brahma Kumari, इसमें आज इतना ही, लेकिन इस श्रृंखला में जो हमने समझा है, जो जाना है, जिसे इम्प्लीमेंट किया है, इसको और सुदृढ़ करते रहेंगे आने वाली कड़ियों में. अभी विदा लेते हैं. ओम शांति.

18वीं सदी का सुधार युग। उस युग के प्रमुख समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस आदि। उन्होंने अपने अपने प्रयासों से समाज कल्याण का बीड़ा उठाया था। इन महापुरुषों के पदचिन्हों का अनुसरण कर स्वामी विवेकानंद ने समाज और देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। पश्चिमी देशों को भारत की एक नई पहचान मिली। भारतीय ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता से उनका परिचय हुआ और सारा विश्व इस तरुण सन्यासी के प्रति आकर्षित हो गया।

0: आपने 19वीं सदी के भारत और मुख्यतः बंगाल के बारे में भी जाना। हमने सुना वो कितना अशांत युग था, समाज दिशाहीन तथा अंधकारमय था। कुछ समाज सुधारकों ने समाज को कुछ हद तक सुधारा, दिशा दी, परंतु सदियों की रूढ़िवादिता, धर्मांधता तथा कदाचार पर संपूर्ण रूप से विजय पाना संभव न था।
1: उसी अशांत कालखंड में स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव हुआ। अपने ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति एवं वैदांतिक राष्ट्रवाद से उन्होंने समूचे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का दिल जीत लिया। दिशाहीन भारत को एक सच्चा पथ प्रदर्शक मिला। जाति, प्रांत और भाषाई अंतर को भुलाकर भारतवासियों ने उन्हें अपने प्रेरणा पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा से लोग मुग्ध हुए।
0: ऐसे दिव्य महापुरुषों की जीवन कथा बहुत ही रोचक है। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने हजार वर्षों का काम कर दिखलाया था। इतने सारे गुणों से धनी स्वामी विवेकानंद को संस्कार अपने परिवार से मिले थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी, अतः विवेकानंद को जानने से पहले उनके परिवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता नगरी के उत्तरी भाग में सिमुलिया या सिमला मोहल्ले में गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर दत्त परिवार का विशाल भवन अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। आज भी उस भवन का जीर्ण द्वार अतीत वैभव का साक्षी बना खड़ा है। दत्त वंश का ऐश्वर्य और ख्याति उनके 12 महीने के 13 उत्सव पर्व का आडंबर उस समय के कलकत्ता के धनी समाज में चर्चा का विषय रहा।
1: कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील राममोहन दत्त के समय में सिमुलिया के दत्तों ने नगर में काफी प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। राममोहन दत्त के पुत्र दुर्गाचरण ने उस समय की प्रथानुसार संस्कृत तथा फारसी भाषा में शिक्षा प्राप्त की और राजभाषा अंग्रेजी भी सीखी। उन्होंने भी वकालत प्रारंभ कर दी, परंतु पिता जैसी धनोपार्जन की प्रवृत्ति उनमें न थी। तत्कालीन धनी संतानों के समान नवीन नागरिक सभ्यता के भोग विलास भी उन्हें आकर्षित न कर सके।
0: ये धर्मानुरागी युवक अवसर और मौका पाते ही धर्म शास्त्रों की चर्चा तथा सत्संग किया करता था। उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए हुए हिंदी भाषी वेदांती साधुओं से प्रभावित होकर दुर्गाचरण ने 25 वर्ष की उम्र में ही सारा ऐश्वर्य और सम्मान त्याग कर सन्यास ले लिया।
1: सन्यासियों के नियमानुसार 12 वर्ष के बाद दुर्गाचरण एक बार अपने जन्मस्थान का दर्शन करने आए थे और अपने एकमात्र पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद दे गए थे। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनके आगमन के एक वर्ष पहले ही उनकी पत्नी यानी विश्वनाथ की माता का निधन हो गया था। सन्यासी पुत्र विश्वनाथ ही सन्यासी विवेकानंद के पिता थे।
0: विश्वनाथ ने अपने दादा राममोहन का अनुसरण कर वकालत करना प्रारंभ किया। वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वकालत में व्यस्त रहते हुए भी अध्ययन में उनका प्रबल अनुराग था। वे फारसी जानते थे, हाफिज की कविताएं पढ़ते थे, अंग्रेजी साहित्य और इतिहास आदि पढ़ने के कारण धार्मिक कट्टरता उनमें ना थी। कई ऊंचे खानदान के मुस्लिम उनके मुवक्किल थे तथा लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर आदि स्थानों की यात्रा करने के कारण वे उस समय के अनेक खानदानी मुस्लिम परिवारों के संपर्क में आ चुके थे, अतः वे उनके रीति रिवाजों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनकी पाबंदी भी करते थे। बाइबल के अध्ययन के कारण वे ईसाई धर्म के भी प्रेमी थे, अर्थात धर्म, ईश्वर आदि के बारे में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वे काफी धनोपार्जन करते थे और खर्च भी वैसा ही करते थे। रिश्तेदारों दोस्तों का आदर सत्कार करना तथा ठाट बाट से रहना वे पसंद करते थे। उनके घर में अनेक आश्रित पलते थे और उस विशाल भवन में किसी चीज की कमी ना थी।
1: परंतु विश्वनाथ की पत्नी भुवनेश्वरी देवी एक पारंपरिक महिला थी। इस बुद्धिमती कुशल गृहिणी की देखरेख में उनके विराट परिवार के सभी कार्य बड़ी कुशलता से संपन्न होते थे। वे बंगला पढ़ना लिखना भली भांति जानती थी। रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत आदि का नियमित पाठ करती और साथ ही अपने पति पुत्र के साथ चर्चा करके तत्कालीन विचारधारा से भी परिचित रहती थी। आस पड़ोस के लोग उन्हें श्रद्धा करते थे। वो मीठा बोलने वाली गंभीर धर्म परायणा महिला प्रतिदिन शिव पूजा करती थी।
0: भुवनेश्वरी देवी के मन में एक दुख था। दो कन्याओं की माता तो वे थीं, पर उनका कोई पुत्र ना था। पुत्र मुख देखने की लालसा ने उन्हें धीरे धीरे बहुत ही व्याकुल कर डाला। वे प्रतिदिन सुबह शाम शिव मंदिर में प्रार्थना करती और शिव को संतुष्ट करने के लिए कठोर व्रतों का पालन करती।

कैलाशपति भुजंगेश्वराय नमः। हे देवाधिदेव, मैं भक्ति पूर्वक तन मन से तुम्हारी सेवा में रत हूँ। सभी कठोर व्रतों का नियम पूर्वक पालन करती हूँ। तुमसे आज्ञा या आशीर्वाद लिए बिना मैं कोई भी काम नहीं करती प्रभु। फिर तुम्हारी कृपा कब होगी? कब आप प्रसन्न होंगे? कब मेरी गोद में एक पुत्र आएगा प्रभु? कब तुम्हारी दया होगी? बोलो बोलो ना, कब होगी दया? कब कब होगी तुम्हारी दया?

0: इतने व्रत उपवास पूजा अर्चना के बाद भी उनके मन को शांति न हुई। शिव को और भी अधिक तुष्ट करने के लिए उन्होंने काशी में रहने वाली एक रिश्तेदार महिला को पत्र लिखा।
1: आपको तो मालूम है कि मैं शिव की पूजा नियमित रूप से करती हूँ, उनके नाम का व्रत उपवास भी करती हूँ, पर उनकी कृपा मुझ पर आज तक नहीं हुई। मेरी पुत्र कामना अधूरी ही रह गई। आप तो भाग्यवती हैं, शिव की नगरी में ही निवास करती हैं। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप हर दिन मेरी ओर से बाबा विश्वेश्वर के मंदिर में पुत्र कामना करते हुए पूजा एवं होम यज्ञ आदि की व्यवस्था कर दें। मुझे आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगी।
2: ये जानकर कि उनकी इच्छा के अनुसार पूजा पाठ हो रहा है, माता भुवनेश्वरी प्रफुल्लित और आश्वस्त हुई। वे शिव अर्चना में और भी ज्यादा डूब गईं। ग्रह देवता शिव मंदिर में ही उनका अधिकतर समय व्यतीत होने लगा।
0: एक दिन प्रातः काल शिव अर्चना के बाद वे ध्यान मग्न हो गईं। परिवार के लोगों ने और दास दासियों ने उन्हें कई बार आवाज दी, पर वे सब कुछ भूल कर बेसुध बैठी रहीं। सारा दिन बीत गया, सांझ हो आई। पति विश्वनाथ के अदालत से लौटने पर उन्हें ये समाचार मिला। वे पत्नी से बेहद प्यार करते थे, व्याकुल होकर पूजा कक्ष में आए और भुवनेश्वरी को आवाज दी।
3: भुवन, ओ भुवन, भुवन, क्या हो गया है तुम्हें? सुना है सुबह से यहां ऐसी ही बैठी हो, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भुवन, तुम सुन रही हो ना? मेरी ओर देखो, जवाब दो भुवन, भुवन।
0: भुवनेश्वरी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे वहीं पर थककर सो गईं। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें छूने या जगाने की। सूर्योदय के समय अचानक घर वालों की नींद खुली। उन्हें पूजा घर से घंटा बजने और मंत्रोच्चार की आवाज आई। सब दौड़ते हुए वहां जाकर एकत्रित हुए। भुवनेश्वरी होश में आ गई थी और जोर जोर से मंत्र पढ़कर शिव को प्रणाम कर रही थी।
1: हे शिव, हे शंकर, हे करुणामय, तुमने मुझे ये क्या दिखाया, क्या दिखाया? क्या ये निरा सपना था या सच का पूर्वाभास? कहो देव, कहो ना। अरे अरे, सुना तुमने? तुम लोगों ने सुना? मेरे इतने दिनों की तपस्या पूरी होने वाली है। हाँ हाँ, शिव ने मुझ पर दया की है। हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे प्रभु।
3: भुवन, भुवन, शांत हो जाओ, सब ठीक तो है ना? क्या देखा तुमने? कहो, इतनी खुश क्यों हो? कहो तो।
1: मैं क्या कहूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने ये कैसा सपना देखा?
3: क्या देखा तुमने? कहो भुवन।
1: मैंने देखा तुषार धवल पर्वत श्रृंग से कैलाशपति शिव उतर कर आ रहे हैं। हाँ, और वो ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे, तुम्हारी कठोर तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा भुवनेश्वरी। और कहते कहते शिव एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर मेरी गोद में आ गए। हाँ हाँ, वो मेरी गोद में आ गए और मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ, सच। ओह, हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे शिव,
2: हे शिव, हे शंकर कहती हुई वे बारंबार माथा टेकती रहीं। परिवार वाले हतप्रभ रह गए।
0: उस दिन 1863 ईस्वी की 12 जनवरी थी, पौष संक्रांति का पुण्य प्रभात। शीत से ठिठुरते हुए नर नारी स्नान के लिए भागीरथी की ओर जा रहे थे। इसी समय सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33:33 पर भुवनेश्वरी देवी ने विश्व विजयी पुत्र को जन्म

0: आनंद उल्लास और हर्ष से दत्त भवन मुखरित हो उठा। मंगल शंख बजने लगे। बंगाल के हर घर में पौष पर्व का आनंदोत्सव मनाया जा रहा था, मानो नवजात शिशु को सादर अभ्यर्थना करने प्रत्येक गृह प्रांगण मुखरित हो उठा।
1: नामकरण का दिन। बालक की आकृति बहुत कुछ उसके सन्यासी पितामह की तरह देखकर परिवार के कुछ लोगों ने शिशु का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा प्रकट की, परंतु माता ने अपने स्वप्न को स्मरण कर कहा,
2: जी इसका नाम शिव के नाम पर वीरेश्वर रखा जाए। ठीक है, वे ही तो शिशु का रूप धरकर मेरे घर आए हैं। ये मेरा शिव, मेरा शंभु, मेरा महेश और मेरा शंकर है, मेरा बच्चा।
0: सभी ने उनका कहना मान लिया। वे उसे वीरेश्वर से वीरे और अंततः बिले कहने लगे। अंत में अन्नप्राशन के समय बालक का नाम रखा गया नरेंद्रनाथ, और भविष्य में यह बालक नरेंद्रनाथ या नरेन नाम से ही परिचित हुआ।
1: बचपन में नरेंद्रनाथ बहुत ही नटखट थे। उनके उधम से घरवाले हमेशा परेशान रहते थे। वे माँ को बहुत तंग करते थे। एक दिन बालक नरेन आंगन में दौड़ दौड़ कर माँ को सता रहा था।
2: बिले, अरे ओ बिले, आना इधर आ, बात सुन मेरी। बिले, ओहो आना, कपड़े बदल ले। अब ओहो
3: नहीं नहीं बदलूंगा कपड़े, लो पकड़ो मुझे।
2: अरे सुन ना।
3: नहीं पकड़ पाई ना, मैं अभी पेड़ पर चढ़ने जा रहा हूँ, नहीं आऊंगा तुम्हारे पास।
2: ठहर, पकड़ती हूँ तुझे। बस ये पकड़ लिया। बोल अब कहाँ जाएगा। हाँ ठहर ठहर, मैं मजा चखाती हूँ। नहीं सुनेगा ना मेरी बात। हाँ नहीं सुनेगा, चल चल आ इधर आ, ये इधर आ, इधर आ, ये ले ये ले, ये शिव, ओ शिव, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, ले। अब तेरा माथा कुछ ठंडा हुआ ना, चल चल अब अंदर चल, चल बेटा सर पोंछ दू, फिर कपड़े बदल लेना। ओह शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर।
1: पिता विश्वनाथ बरामदे में खड़े होकर माँ बेटे का ये नाटक देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा,
4: भुवन तुम क्यों हमेशा बिले के पीछे पड़ी रहती हो, अरे खेलने दो ना उसे। देखो ना, नाहक उसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया, अगर उसे जुखाम हो गया तो जाओ जल्दी से पहुंचो उसका सर।
2: हाँ हाँ, तुम्हें तो हमेशा मेरी ही गलती दिखाई देती है, बेटे की शरारत तुम्हें दिखती ही नहीं। अरे देखो तो, दौड़ा दौड़ा कर मेरा तो दम निकाल दिया, और उसे भिगोने में देखो ना, ये देखो मैं पूरी तरह भीग गई। अरे बिले चल ना, चल जल्दी चल चल।
4: पर तुमने दोबारा उसे नहलाया क्यों, और वो भी ठंडे पानी से।
2: क्या आप नहीं जानते कि आशुतोष शिव जलाभिषेक से ही संतुष्ट होते हैं, और मेरा बिले भी तो शिव का ही अंश है, इसलिए जब मैं इसे किसी भी तरह से शांत नहीं कर पाती तो ठंडा पानी डालकर शिव शिव की जाप करती हूँ, और ये भी शांत हो जाता है।
4: तुम माँ बेटे की महिमा अपरंपार है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे बच्चा है अभी, शरारत तो करेगा ही।
2: ए देखो जी, वकालत करते हो उसी को संभालो, हम माँ बेटे के बीच ना आना, ठीक है। ए, ए, ए, अरे अरे अब फिर भाग गया। अरे देखो तो, ओहो फिर भाग गया बिले।
4: लो संभालो अब।
2: ओ माँ गो माँ, मैं तो इसकी शरारतों से तंग आ गई हूँ। ओ अरे अरे, ओ राधा शामू, अरे देख तो किधर भाग गया, वो भाग रहा है, वो जा पकड़। पकड़ लिया ना, ले आ इधर, इधर ले आ। मांगो मां, महादेव शिव ने स्वयं ना आकर जाने कहां से एक भूत को भेज दिया है, सबको परेशान कर रखा है। ओह अरे तू तो फिर से रोने लगा, देखा देखा जी अपने लाडले की करामत। हाँ हे देख देख बिले, अगर तू ज्यादा उधम मचाएगा ना तो महादेव तुझे कैलाश में नहीं आने देंगे। हाँ
3: सच कह रही हो ना माँ, शिव जी मुझे कैलाश नहीं आने देंगे तो मैं नंदी बैल की सवारी कैसे करूंगा।
2: अच्छा बच्चा बनो बेटा, तो शिव जी तुझे खुद वहां ले जाएंगे, खूब प्यार करेंगे, समझा। अच्छा अच्छा अब चल, तो चल भीगे कपड़े बदल ले। हाँ चल चल बेटा, चल चल आजा आजा आजा आजा, चल चल।
4: तुम दोनों माँ बेटे की बातें तुम दोनों ही जानो, और जाने तुम्हारे शिव जी। भाई मैं तो चला। नरेंद्रनाथ सबके प्रिय थे, मोहल्ले के धनी निर्धन सभी परिवारों के साथ उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया था। यदि उनके परिचितों में से किसी लड़के के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती तो उसे सांत्वना देने वे ही पहले रहते थे। हर घर में आना जाना उनके परिवारजनों को पसंद ना था। एक दिन
5: ए ए ए बिले, क्यों रे बिले, तू कहाँ गया था, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही थी।
3: अरे मैं तो देवू के घर गया था, आपको मालूम नहीं पड़ा क्या, आज देवू के दादाजी गुजर गए। देवू बहुत रो रहा था, उसी के साथ बैठा था।
5: हे भगवान, इस लड़के को जात पात का कोई ध्यान नहीं है, तूने देवू के दादाजी के शव को छुआ तो नहीं। हे ईश्वर,
3: छुआ नहीं, सब दादाजी को आखिरी बार प्रणाम कर रहे थे, सो मैंने भी किया।
5: तूने प्रणाम किया, चल आज तेरी अच्छी पिटाई होगी, चल माँ के पास।
3: आप मुझे डांट क्यों रहे हैं, देवू मेरा दोस्त है, उसके दादाजी को मैं भी दादाजी कहता था, और दादाजी को प्रणाम करने में क्या बुराई है, माँ ही तो कहती है बड़ों का आदर करना चाहिए।
5: अरे अरे अरे अरे अरे, इस मलेच्छु को कौन समझाए, चल चल तू तो अंदर चल, फिर देखना क्या होता है तेरा। ए ए ए, ए किसी चीज को छूना मत, पहले नहा ले, चल पहले नहा।
3: ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, आपको छू दिया, क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, आप तो वैसे ही हैं।
5: हाय हाय हाय हाय हाय, ये क्या कर दिया, मैं तो नहा धोकर घर से बाहर जा रहा था, छू दिया ना, अब फिर से नहाना पड़ेगा, राम राम राम।
3: तो जाइए फिर से नहाइए।
5: राम राम राम राम राम।
0: और नरेंद्र हंसते हुए अंदर चले गए। चाचा जी के गुस्से का अंदाजा तो आप खुद लगा सकते हैं।

0: नरेंद्र बचपन से ही बहुत हाजिर जवाब और शरारती थे, पर उनकी बाल सुलभ शरारतों से अधिकतर लोगों का मनोरंजन होता था। उनकी मजेदार बोलचाल और मनगढ़ंत किस्से कहानियों को सुनकर गंभीर स्वभाव वाले बड़े बूढ़े भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उनके दोस्त तो नरेंद्र से कहानियां सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, और नरेंद्र भी मौका मिलते ही कहीं भी मंडली जमा कर बैठ जाते और दोस्तों को तरह तरह की कहानियां सुनाते। रामायण महाभारत की कथा कहानियां तो सुनाते ही थे, साथ ही अलिफ लैला की कहानियां, ईसप की नीति कथाएं तथा देश विदेश की परिकथाएं भी सुनाया करते थे।
1: नरेंद्र को किसी प्रकार का संकोच न था। अगर कोई कहानी याद न आती तो मनगढ़ंत पात्रों की काल्पनिक कहानियां दोस्तों को सुनाया करते। उनकी काल्पनिक कहानियां भी इतनी मजेदार हुआ करती थीं कि दोस्त यह समझकर भी कि नरेंद्र झूठी कहानियां सुना रहे हैं घंटों मंत्रमुग्ध हो सुनते रहते थे। बचपन से ही उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी।
0: जीवन के आरंभ में ही देखा गया था कि अपने हम उम्र साथियों के साथ झुंड बनाकर क्रीड़ा कौतुक करते समय नरेंद्र ही इन सब आयोजनों के नेता होते। नेतृत्व सुलभ गुण तब से ही उनके चरित्र में प्रस्फुटित होकर धीरे धीरे समुचित रूप धारण कर रहा था।
1: उन दिनों पाठशाला में मकर संक्रांति के दिन गंगा की वंदना के गीत गाकर गंगा के तट पर जाकर पूजा अर्चना करने की प्रथा थी। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ बाबू मकर संक्रांति के दिन गुरुजी एवं छात्रों को नई धोती कुर्ता दिया करते थे एवं गुरुजी छात्रों को गाजे बाजे के साथ गंगा पूजा कर आने की अनुमति देते थे।
0: लौट कर आने पर प्रथा अनुसार घर पर बनी मिठाइयां खाने को मिलती थीं। नरेंद्र ने पिता से छात्रों के साथ गंगा पूजन की अनुमति मांगी। बाजा गाजा और पताका आदि की व्यवस्था पिता के खर्चे से सहज ही हो गई। अतः गंगा की महिमा गाते हुए बच्चे जुलूस बनाकर गंगा तट पहुंचे। वहां केले के पेड़ के छिलकों से नाव बनाकर उनमें दिया जलाकर रख दिया गया और फूल मालाओं से सजाकर नावों को गंगा जल में बहा दिया गया।
1: छोटे छोटे नाव धीर गति से गंगा में बहने लगी। संध्या के झुरमुट अंधेरे में जगमगाती हुई नाव दियों के साथ साथ धीरे धीरे लहरों के साथ झूमती हुई सागर की ओर बढ़ चली। बच्चे ढोल मंजीरों के साथ गाते रहे।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापियादास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वरा संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: श्रोते हो, आताच आपण युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद ऐकलात। हा कार्यक्रम स्वराज संस्थान संचालनालय यांच्या सहकार्याने विद्यावाणी सामुदायिक रेडिओवरून प्रसारित करण्यात आला। ऐकत रहा विद्यावाणी 107.4 FM।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, दुनिया में जब कोई चीज पूरी तरह टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं, तो हम मान लेते हैं कि अब इसका दोबारा जुड़ना नामुमकिन है। अगर कोई व्यक्ति बुरी संगत, अवसाद, गलत आदतें या चिंताओं के ऐसे दलदल में फंस जाए जहां उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका हो, तो समाज उस पर यह ठप्पा लगा देता है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, यह खत्म हो चुका है। लेकिन अध्यात्म का नियम दुनिया के नियमों से बिल्कुल उल्टा है। वहाँ कोई भी अंत अंतिम नहीं होता। विदाता के दरबार में एक ऐसा पारस पत्थर है जो राख हो चुके कोयले को भी एक पल में कुंदन बना सकता है। कबीर साहब आज हमें उसी दिव्य संजीवनी बूटी की ताकत दिखा रहे हैं जो मरे हुए को भी नया जीवन दे देती हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह चमत्कारिक और दार्शनिक सूत्र। काटी कुटी माछली छींके धरी छकोह, काटी कुटी माछली छींके धरी छकोह, कोई एक आशीर मन बसया दह में पड़ी बहोह। काटी कुटी माछली छींके धरी चहोह,

0: श्रोताओं, कबीर साहब अपनी प्रसिद्ध उलटबासी शैली में एक असंभव सी दिखने वाली घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं, काटी कुटी मछली एक मछली थी जिसे माया और वासना के शिकार ने पकड़ लिया। उसके टुकड़े टुकड़े करके काटी कुटी यानी पूरी तरह काट डाला, छींके धरी चढ़ोह और उसे पकाने के लिए चूल्हे पर छींके यानी हांडी में चढ़ाकर रख दिया। यानी सांसारिक दृष्टि से उस जीव के बचने की रत्ती भर भी कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। उसका अहंकार और उसका अस्तित्व पूरी तरह खंडित हो चुका था। लेकिन तभी एक महाचमत्कार घटित हुआ। अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, कोई एक आशीर मन बसा, उस कटी हुई मछली के भीतर सद्गुरु के ज्ञान का, उस परमात्मा के नाम का कोई एक आशीर यानी केवल एक अक्षर ऐसा मन में आकर बस गया, दह में पड़ी बहोई कि वह कटी हुई मछली एक ही छलांग में उस कढ़ाई और छीके से निकलकर वापस अपने उसी अताह दह यानी परमात्मा रूपी गहरे मानसरोवर में बहोई यानी वापस जाकुदी और फिर से अमर होकर तैरने लगी। यह दोहा अक्षर ब्रह्म और चेतना के पुनरुत्थान का महासूत्र है। मछली हमारी आत्मा का प्रतीक है जिसे संसार के पांच विकारों काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ने काट कूट कर लहूलुहान कर दिया था और काल की हांडी में पकने के लिए छोड़ दिया था। कबीर समझा रहे हैं कि जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है तब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। तब भी यदि सद्गुरु का एक अक्षर उसके मन में उतर जाए तो वह सोई हुई चेतना को पुनर्जीवित कर देता है। वह जीव माया की कड़ाही से निकलकर सीधे दह यानी ब्रह्मानंद के उस अगाध सागर में लीन हो जाता है जहां मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा उन लोगों के बारे में सोचिए घुटने टेक देते हैं। आज कबीर इस सूत्र से भरोसा जगाते हैं और कहते हैं कि आप चाहे कितने ही टूटे हुए क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, अपने भीतर उस एक अक्षर को, उस राम नाम के विश्वास को बसने दीजिए। सद्गुरु के एक छोटे से शब्द में इतना सामर्थ्य है कि वह आपके पूरे जीवन को एक पल में बदल सकता है। अपनी चेतना को इस संसार की कड़ाही से उठाइए और परमात्मा के उस अगाध प्रेम के सागर में छलांग लगाने दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: एपिसोड नंबर 55 बात तगता फैक्ट्स ऑफ एलिगेशन आर प्रूव्ड विद स्पेसिमेंस बट दीज स्पेसिमेंस वर स्पेसिफाइड due to vipassana. It was show they remain in their own cocoon. It was also said vipassana mars speed and progress. But is it a folly of vipassana? Or who conduct it falsely? No one has checked this with conscience. In fact, vipassana means concentration. Concentration for knowledge. Through full concentration, knowledge is figured out and thoughts take birth. Such creativity means vipassana. Vipassana is not an end. It is a means. It is a way. And it is forgotten. Through vipassana, sammayak samadhi is attained without rituals. It contains consciousness, analysis and wisdom, modesty, compassion. बाबा साहेब स्टडीज वर फॉर 18 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स ऑफ अ डे और फॉर 21 आवर्स दिस कॉन्सेंट्रेटेड परस्यूट ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ विपश्यना आउट ऑफ इट फ्लरिश सम्यक समाधि बाबा साहेब वाइप टीयर्स ऑफ द afflicted and the unprivileged and contained to expand his active compassion. Baba Sahib regarded character as the highest virtue. So, no one dared to point the finger at his character, not even of his directors. In his concentration, there are no rituals, no blind beliefs. Specimens of Vipassana shut their eyes, asked their gods, Oh God, give me this. Oh God, give me that. Oh God, give me bungalow. Oh God, give me vehicle. Oh God, let my sickness disappear. This greedy beggar's attitude are miles away from science. Likewise, away from specific kind of looking observation. So, these specimens turn Vipassana into a kind of ritual and adhere to blind beliefs, become blind followers of religion. So, how these specimens can adopt Vipassana? Those who defame Vipassana, never participated in it due to lack of observation, can never concentrate without a look or observation, take our authority for criticizing unconsciously. Bhatatagata for increasing knowledge and drive away fear factor, you ask to concentrate through observation. For concentration, breathing

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे थे खुशी की, और खुशी के इंडेक्स को बहुत अच्छी तरह से जब हम समझ पा रहे हैं, हमने ये समझा कि इस इंडेक्स को हम बहुत आराम से स्टेबिलिटी में ला सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस इंडेक्स को फिर ऊपर फिर नीचे लेकर जाता है, इनको हम साथ साथ मिलकर खंगाल रहे हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछली कड़ी को देखें तो उम्मीदों की बात की थी, और जब हमने कहा कि हम तो कोई उम्मीद किसी से रखते ही नहीं थे, आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू और यू नो लाइक फ्रॉम द सिचुएशन, बट देन वी आर द वंस हु से कि आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। तो अननोइंगली, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती जा रही हैं, जैसे हमने बिलीफ सिस्टम से भी बात की थी कि एंड एक्चुअली दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट। आई वुड लाइक टू शेयर अपने सभी दर्शकों के साथ की, और आप भी हमें जरूर अपने वो जितने भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि जो फीलिंग जो थी, यू रिमेम्बर हमने इसे बात की थी कि फीलिंग इतनी गहरी हो जाती है और वो हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा थॉट था। तो वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, जैसे ही उस पे हमारी एक्स गिरनी शुरू होती है, वो काम करने, इट इज वर्किंग विद मी, आई होप इट्स वर्किंग विद यू, सो अमेजिंग लाइक रिजल्ट्स कमिंग। तो अब हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो वो
1: उसमें भी बिलीफ ही है। आई एक्सपेक्ट द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स देन एवरीथिंग एवरीवन, टू गो अकॉर्डिंग टू द वे आई वांट देम टू गो, यू नो, टू टॉक द वे आई वांट देम टू टॉक, टू बिहेव द वे आई वांट देम टू बिहेव, टू परफॉर्म द वे आई वांट देम टू परफॉर्म। तो कहीं ना कहीं मैंने एक बिलीफ बना लिया है कि जैसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ सब कुछ वैसा ही होने लगता है। हम जैसे आपने कहा कि हमें पता थोड़ी है कि हम सच में इतना सारा एक्सपेक्ट करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वो चीज़ वो नहीं होती जो हम एक्सपेक्ट एक्चुअली कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि आई वॉज सिंपल थिंग लाइक आई एक्सपेक्ट दैट मेरे घर में नल में पानी 24 घंटे आएगा। ओके आज सुबह नल खोला एंड पानी नहीं है, रोज मैं ये नहीं सोचती थी आई एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी वाटर, यू डोंट क्रिएट दैट कॉन्शियस थॉट। लेकिन जिस दिन पानी नहीं आया उस दिन हम डिस्टर्ब हो जाते, सुबह सुबह ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई तरीका। दिस डिस्टर्बेंस मीन्स दैट सम एक्सपेक्टेशन ऑफ माइंड हैज नॉट गॉट फुलफिल्ड, दैट्स व्हेन आई गेट डिस्टर्ब। तो एक्सपेक्टेशंस वैसे नहीं पता चलेंगे कि हमारे कितने सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन जब कोई चीज़ हमारे अनुसार नहीं होती तब हमारा डिस्टर्ब होना, अगर हम नहीं डिस्टर्ब हुए सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई वॉज एक्सेप्टिंग ईदर वेज, पानी आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, देन देर वॉज नो एक्सपेक्टेशन। लेकिन एक्सपेक्टेशन है ये कैसे पता चलेगा, किसी भी चीज में, परिस्थिति में, दुनिया में, मौसम में और लोगों के साथ, तो ऑफकोर्स कि अगर मैं डिस्टर्ब होती हूँ तो मेरी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई है। सो यू कैन प्रोबेबली गो बैकवर्ड्स,
0: कि अगर हमें कुछ ऐसी बात हुई जो मुझे तंग किया एक, लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ, कुछ तो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, मतलब हम समाज में हैं, सोसाइटी में हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो मेरी एक्सपेक्टेशन और नॉन एक्सपेक्टेशन से परे हैं, यू नो लाइक देयर इज अ फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ,
1: वेयर इज इट रिटन।
0: Uh-huh, but that's what I'm trying to ask.
1: That's exactly. The fixed way of life is what I choose. The fixed way of life is according to my definition of fixed way of life. Code of conduct. Let's say, mere liye code of conduct hai, exact time par pahunchna kahin bhi. ठीक है, मतलब जो टाइम बोला है उससे भी 5 मिनट पहले पहुंचना, दिस इज माय कोड ऑफ कॉन्डक्ट। आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है अगर 5-10 मिनट लेट पहुंचे, कभी जल्दी भी पहुंच जाएंगे कभी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज योर कोड ऑफ कॉन्डक्ट। लेकिन अब आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट और मेरा कोड ऑफ कॉन्डक्ट थोड़ा सा
0: कॉन्फ्लिक्ट में
1: क्लैश होने वाला है,
0: बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: हाँ, तो ये तो छोटी बात है लेकिन ये होता है, क्योंकि मेरा कोड ऑफ कॉन्डक्ट या मेरे अकॉर्डिंग टू राइट वे ऑफ लिविंग क्या है, कि जो कमिट किया वो टाइम पर पहुंचना है। आपका है इट्स ओके, इतनी दूर से हम ट्रैवल करके आ रहे हैं, 10-1 मिनट लेट हो गया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो नाउ इफ आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग यू अकॉर्डिंग टू माय कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ फेयर इज इट?
0: बट अगेन सिस्टर शिवानी, इट बिकम्स देन तो इट लाइक ईच वन ऑफ अस आर गोइंग टू हैव आवर कोड ऑफ कंडक्ट।
1: ईच वन ऑफ अस डज हैव आवर ओन कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आप देखो हम हर एक अपने अपने राइट्स और रॉन्ग्स, इसीलिए हम कहते हैं ना राइट और रॉन्ग क्यों रिलेटिव है, हर एक ने अपनी राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन अपने अनुसार क्रिएट की हुई है।
0: वो भी हमने तब तैयार की ना जब हम एक पूरे समाज में परिवार में बढ़ते हुए अपने देखते हुए आ रहे थे। मर्यादाओं की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, या कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात करते हैं, वो हमने उस तरह से डेवलप किया।
1: उस तरह से वो सारी चीजें जो आपने कहा, समाज, हमारा कास्ट, हमारी फैमिली, वो इन्फ्लुएंसेस हैं उसके ऊपर। डेफिनेटली आप जिस कंट्री में हैं, आप जिस कास्ट को बिलोंग करते, दोज आर ऑल इन्फ्लुएंसेस। बट सपोज आप पंजाबी हैं, डज इट मीन ऑल पंजाबीज हैव द सेम कोड ऑफ कॉन्डक्ट?
0: नो,
1: आप इंडियन हैं, आप इंडिया में रहते हैं, डू ऑल इंडियंस हैव द सेम कोड ऑफ कॉन्डक्ट? नो। डू ऑल इंडियंस मे पंजाबीज ऑल हैव द सेम कोड ऑफ कॉन्डक्ट? नो। So it's not okay in India, in Punjabi, in everyone in your family, do they all have the same code of conduct?
0: No.
1: So again, सारा जो कल्चर का इन्फ्लुएंस भी अगर हम लें, कि देश का, कास्ट का, परिवार का भी ले लें, जो बड़ी फैमिली छोड़ो, हमारे छोटे से परिवार में चार लोग हैं, डज एवरीवन हैव द सेम कोड ऑफ?
0: नो, डिफरेंट एथिक्स, डिफरेंट थॉट प्रोसेस।
1: तो हमारी कास्ट और कल्चर का, अगर हम घर में चार हैं तो चारों के ऊपर उसका थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन फिर हर एक ने अपना अपना
0: अपना अपना तय कैसे किया है।
1: आपके पास कभी भी ये नहीं होगा कि सारे एक ही थॉट के साथ चले। आप कभी भी नहीं कर सकते हो, इट विल नेवर बी, बिकॉज एवरीवन इज यूजिंग देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग। तो कभी ये नहीं होगा। सी, एक्सपेक्टेशन मींस माय एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू मींस कि जैसी मेरी सोच है आपकी सोच भी
0: वैसी होनी चाहिए।
1: यही तो है ना एक्सपेक्टेशन, कि जो मेरी सोच है आपकी सोच भी सेम होनी चाहिए। आई डोंट थिंक दिस विल एवर बी पॉसिबल। फॉरगेट सारे एक सोसाइटी के अंदर हम दो लोगों की सोच भी सेम कैसे हो सकती है? कभी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर भी, एक पर्टिकुलर इशू को भी लेकर दो लोगों की सोच कहाँ सेम होती है? दे विल ऑलवेज बी
0: डिफरेंट,
1: अ लिटिल डिफरेंस। एंड एक्सपेक्टेशन मीन्स कि मैं एक्सपेक्ट करूँ आपकी सोच मेरी जैसी हो, डिफिकल्ट। एक्सेप्टेंस मीन्स आई एक्सेप्ट कि आपकी और मेरी सोच
0: डिफरेंट
1: है।
0: इनफैक्ट येस, आई थिंक क्योंकि एक्सपेक्ट करके भी या ये मान के भी तो डिस्टर्बेंस मुझे ही आनी है।
1: इट्स इजियर नहीं, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। हमने जितना एक्सपेक्टेशन,
0: हम चेंज तो बच्चों को सही कोड ऑफ कॉन्डक्ट, बच्चों को सही तरीका कि ये चीजें करनी ही चाहिए।
1: बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट डजंट सी, एक है एक्सपेक्टेशन, एक है किसी को आप अपना ओपिनियन दें, किसी को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट और रॉन्ग बताएं। आपका जो रोल है, आप सीनियर हैं, आप पेरेंट हैं, आप टीचर हैं, दैट्स योर रोल। व्हाई इवन अमंगस्ट फ्रेंड्स, आपको अगर कुछ राइट लगता आप शेयर कर सकते हैं। डू यू नो समथिंग, आई फील यू कुड डू इट लाइक दिस, बट सेइंग आई एक्सपेक्ट यू टू डू इट लाइक दिस मींस आई एम एक्चुअली सेइंग यू बेटर डू इट लाइक दिस। देयर इज अ डिफरेंस,
0: एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट लाइक दिस, इट मींस यू एंड यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, यू नो, यू आर नॉट राइट।
1: तो वो फर्क है। तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, यस, पेरेंट्स बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से रखते, लेकिन उसमें क्या है कि एक एक बार जबकि वो बच्चा उस एक्सपेक्टेशन को नहीं मीट कर पाता, तो पेरेंट्स क्या हो रहे हैं?
0: हर्ट
1: हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत लेट डाउन फील करते हैं कि मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया। अब एक्सपेक्टेशन हमने ही रखी, लेट्स से मैंने एक्सपेक्टेशन रखी कि आपके 90% आए बच्चे के, या वो डॉक्टर बने या व्हाटएवर, मैंने एक्सपेक्टेशन रखी, वो नहीं कर पाया। मैंने रखी एक्सपेक्टेशन, वो नहीं कर पाया, मैं हर्ट हो गई, डिजेक्टेड हो गई, मैंने इतना कुछ उस प्रोसेस में कह दिया उसको, तो हमारा रिश्ता क्या हुआ? ये एक्सपेक्टेशन किसने रखी थी? मैंने ही रख ली थी। डिड द चाइल्ड से that yes I will be able, and sometimes even if the child has said that yes, you know, I will
0: there
1: do this much,
0: there are other things, you know, other factors which take over.
1: दूसरों को क्यों हम बहुत देखें, अपने बारे में क्या? Am I able to meet up to my expectations?
0: Oh yes.
1: आज हम कहते आज मैं सारा दिन में ये करूँगा, am I always able to do it? तो खुद के expectations नहीं meet up कर पाते, तो हमारे पास बहुत सारे excuses होते। वो आपको पता है ऐसा हो गया, so I couldn't do it, मैं तो पढ़ कर गया था, teacher नहीं ठीक से।
0: कई बार तो हम नहीं अगर कर पाते तो हम अपने आप से भी इतने dejected हो जाते हैं, जैसे हम बच्चों से होते हैं या बाकियों से होते हैं। What I want to ask actually is, what is the way out?
1: लोगों को, on a society at large, बच्चों को, घर के अंदर, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे लिए राइट क्यों है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और मुझे वो करने के लिए सशक्त बनाया जाए। आई नीड टू बी एम्पावर्ड, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, फुल स्टॉप। इट्स लाइक अ कोड, यू नो, जो इन्फोर्स कर दिया जाता है दूसरे के ऊपर, अगर दूसरा उसको स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है, या दूसरे की एप्टीट्यूड ही नहीं है उतना करने की, दूसरे की कैपेसिटी ही नहीं है करने के लिए, वो नहीं कर पाएगा. एंड देन आई विल से आई एक्सपेक्टेड यू टू डू दिस, लेकिन तो आप
0: नहीं. तो फिर जैसे एक, जैसे हमने कहा कि एक कंट्री के अपने लॉ है, सिमिलरली घरों में भी कुछ लॉज होते हैं.
1: yes.
0: तो वो लॉज को अगर इवन इफ एज अ चाइल्ड आई डोंट फील कंफर्टेबल अबाउट इट, व्हाट शुड आई डू, यू नो, लाइक
1: दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. यू हैव टू फर्स्ट, जो घर में हम बना रहे हैं, चलो देश के लॉज हम इकट्ठे मिलकर नहीं बना सकते, घर के तो बना सकते हैं. जितना हरेक की अपनी कंफर्ट लेवल उसमें देखी जाएगी लॉ बनाते टाइम, उतना लॉ को फॉलो करना easier हो जाएगा. Then I will never break the law. See, if I'm, अगर आपने घर में एक रूल बनाया, suppose कि 2 घंटा टीवी देखेंगे, लेकिन अगर सबने मिलकर ये रूल बनाया होगा, तो आप घर में हो या नहीं हो, बच्चे फिर भी टीवी नहीं देखेंगे. लेकिन अगर आपने आपने अकेले ने रूल बना दिया कि 2 घंटा ही टीवी देखना है, बस आई एक्सपेक्ट दैट यू विल नॉट वॉच एनी मोर. अब आप जिस दिन घर पे नहीं है,
0: वो पूरा दिन देखेंगे. और आप जब ऑफिस से आते हैं, आप तो कंटिन्यूस टीवी देखते हैं, आप संडे को होते हैं, सैटरडे को घर होते हैं, आप पूरा टाइम टीवी.
1: सो जब हम कुछ ऐसे रूल्स भी बनाएं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इवन इन एन कंपनी, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन ट्राई, जितना हरेक जुड़ता है उसको बनाने में, हरेक कंफर्टेबल फील करता है, या हमने ये बनाया है, मुझे ये करना है. सी आज घर में क्या हो रहा है, बच्चे ये कहते हैं मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए ये करना पड़ रहा है. दिस इज़ नॉट अ वेरी नाइस फीलिंग कि मुझे किसी और के लिए ये करना है, तो वो मुझे एक यू नो बंधन जैसा फील करता है. और ये कहना कि मुझे किसी और के लिए करना पड़ रहा है, इट मीन्स मैं नहीं करना चाहती, मुझे किसी और के लिए करना पड़ रहा है. या तो फिर मैं कहती ना मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम डूइंग इट, नो आई एम डूइंग दिस फॉर माय पेरेंट्स.
0: इनफैक्ट अगर हम देखें, आई जस्ट रियलाइज, यू नो, एक वन थॉट विच केम कि मुझे जब काम करवाना पड़ता है एज अ मदर ऑल्सो, और अगर मैं बॉस के रूप में सोचूं, अगर मैंने मतलब वो करवाना भी बड़ा मुश्किल होता है, यू नो, जो रूल्स और वो तय किए हुए हैं, अगर हम सबकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअली लेकर रूल्स बनाएं, तो हमें वो एनफोर्स नहीं करने पड़ेंगे,
1: वो नेचुरल हो जाएगा.
0: हाँ.
1: क्योंकि अगर घर में, स्टार्ट विद द हाउस, फिर ऑफिस में नेक्स्ट स्टेप पर देखते, लेकिन अगर घर में हम ये ट्राई करना शुरू करें, हर एक की राय लेकर, एंड यू नो दैट फीलिंग शुड बी क्रिएटेड कि हम सब मिलकर ये बना रहे हैं, हम सबको क्या कंफर्टेबल लगता है, तो आपको कभी चेक नहीं करना पड़ेगा कि वो रूल फॉलो हो रहा है या वो नहीं हो रहा, क्योंकि वो रूल वो बच्चे ने खुद बनाया है. वो रूल अब आपके लिए नहीं फॉलो कर रहा है, वो इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि उसने खुद बनाया. देखो, जब क्रैकर्स गवर्नमेंट ने कहा अच्छा नहीं है, प्लास्टिक दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा अच्छा नहीं है, हमारे से ज्यादा अच्छे तो बच्चे फॉलो कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको स्कूल में वो समझाया गया, उसका डैमेज पता, एंड चिल्ड्रन आर वेरी गुड विद इट.
0: दे वर एम्पावर्ड, दे वर अलाउड टू टेक डिसीजंस, एक्चुअली दे वर ट्रीटेड एज एडल्ट्स.
1: एब्सोल्युटली, एंड दे लाइक दैट. एवरीवन लाइक्स दैट कि अच्छा मुझे समझाया गया और फिर मुझे बताया गया आपको क्या लग. सी नो वन सेड बैन क्रैकर्स. अगर आप घर में बोल देते चाहे कुछ भी हो जाए पटाखे नहीं चलने, कोई नहीं मानेगा, बच्चा जाके छुप कर करेगा. और फिर उनको बताया गया आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए. द डिसीजन केम फ्रॉम द चिल्ड्रन. इट वॉज नॉट आपको ये नहीं करना है, इट वॉज आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए. द चिल्ड्रन आर वेरी मैच्योर. आप एक छोटे बच्चे को भी, 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे को उसके लेवल की बात अगर करेंगे ना, द चाइल्ड नोज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. अगर चाइल्ड रॉन्ग कुछ कर भी रहा है, यू टॉक टू हिम एज एन अडल्ट इंस्टेड ऑफ सेइंग ये नहीं करना है, ही विल नॉट लाइक इट. वो फिर भी करेगा क्योंकि अभी तक उसने नहीं एक्सेप्ट किया है. एंड तब वो कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट, आप बार बार बोलो नहीं करना है, फिर वो बार बार कर रहा है, फिर आप बार बार बोलो, और आप कितना बोलेंगे. और आज का एनवायरनमेंट ऐसे हो गया है कि फिर हम बहुत ज्यादा, हमें चेक रखना पड़ता है बच्चों पर. ठीक है, घर पे आपने कोई चीज फोर्स कर दी, ये मत पढ़ो, ये मत देखो, इन लोगों से ऐसी बात मत करो, ना वट एवर, क्योंकि हम कहते हैं आजकल बहुत कुछ हो रहा है सोसाइटी में. बाहर जाने के बाद आप क्या करेंगे? कैन यू चेक? वो बच्चा कंप्यूटर पर बैठा है, कैन यू चेक एवरी टाइम? आप कितना टाइम खड़े रहेंगे चेक करने के लिए कि वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा? That will not be the way. And jitna aap is tarah se forcefully rule impose karenge, unke andar aur bhi zyada aayega ki hame wo karna hai. Lekin understanding ke saath, awareness ke saath aur maturity ke saath discuss karenge and then empower karenge. फिर वो खुद अपना उसको अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट में डालेंगे. यू नो, एक है मैं आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करूं, लेकिन एक है आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट मेरे कोड ऑफ कॉन्डक्ट की लिस्ट में आ जाए तो फिर फॉलो करना
0: मेरा आसान हो जाएगा. और सबसे बड़ी बात है वो उसका हुआ ना तो मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ खत्म हो जाएगी.
1: तो कितनी सारी चीजें हो गई. एक तो मैंने आपके कोड ऑफ कॉन्डक्ट को समझा, अपनाया. मेन चीज है मुझे उसे अपनाना है. एक बार मैंने अपनाया, मैंने अपने लिए उसको किया क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता है. और दूसरा, अगर मैं नहीं भी बाय चांस कर पाई, आप हर्ट नहीं होंगे क्योंकि मैं आपके लिए नहीं कर रहे थे. आई एम डूइंग दिस नाउ फॉर माई सेल्फ एंड नीदर विल आई बी अंडर द प्रेशर. यू नो, ये प्रेशर है बहुत ज्यादा, हस्बैंड वाइफ का, पेरेंट्स बच्चों का. बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर के अंडर है. आई हैव टू डू दिस फॉर माई पेरेंट्स. तो प्रेशर के अंडर परफॉर्मेंस. एंड इसमें भी अगर हम एक चीज देखें कि औरों से एक्सपेक्टेशंस तो चलो देखते करनी या नहीं करनी, अपने से एक्सपेक्टेशंस अपने से तो एक्सपेक्टेशंस रखें ना. इफ आई कैन एक्सपेक्ट के यू डू व्हाट आई वांट, व्हाट अबाउट मी एक्सपेक्टिंग दैट
0: आई शुड डू व्हाट आई वांट.
1: एंड जब अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट हम बनाते तो उसमें भी हमारी एक्सपेक्टेशंस यही हैं अपने आप से. मैं सारा अपना काम खत्म कर लूँ, आई एम अ गुड पेरेंट, मेरे बच्चों को ये करा दूँ, वो भी सेकेंडरी है. जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट बनाएं, क्योंकि हमें बहुत आदत है एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट में हमारी फर्स्ट जो अपने आप से होनी चाहिए वो है हैप्पीनेस.
0: Whether I'm happy or not.
1: Yeah, what about that? Because ये सारी जो एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट है, आप ऐसा करो, आप ऐसा बोलो, मौसम ठीक रहे, ट्रैफिक, ये इसलिए है सारा कुछ क्योंकि ये सब चीजें जब होंगी तो मेरा मन कैसा रहेगा?
0: छात्र.
1: जब कोई भी इनमें से चीज डिस्टर्ब होती है तब मेरा मन डिस्टर्ब होता है.
0: नलके में से पानी नहीं आना
1: तो मैं डिस्टर्ब हुई ना, आई गॉट डिस्टर्ब. दैट्स व्हाई आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पानी आना चाहिए, क्योंकि पानी आता तो मैं ठीक रहती.
0: तो नॉर्मल रहता ना, ठीक, मतलब पता भी नहीं चलता कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था.
1: सो नाउ लेट्स पुट ऑन आवर एक्सपेक्टेशन लिस्ट. सबसे पहले कि मेरी अपने से क्या अपेक्षाएं हैं. मेरी अपने आप से अपेक्षाएं हैं खुशी, शांति, स्टेबिलिटी. इसको फर्स्ट रखते, बाकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी उसके बाद रखते. तो उसमें क्या होगा, एक है आपने मेरे

0: ड्राइवर नहीं पहुंचा तो पहला जो रिएक्शन है या पहला जो क्रिएशन है, ऑफ कोर्स नाउ आई स्टार्टेड सेइंग क्रिएशन, इज डिस्टर्बेंस.
1: तो क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन सबसे रख रहे हो एक्सेप्ट फॉर
0: फ्रॉम योरसेल्फ.
1: बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है ना, उनमें एक और ऐड करते हो ऊपर कि फर्स्ट एक्सपेक्टेशन जो मेरी है वो ये कि चाहे कुछ भी हो जाए पहले मुझे ठीक रहना है. मुझे
0: कैसे
1: ठीक
0: याद रखें, ये
1: ये
0: कैसे
1: धीरे धीरे
0: करें?
1: आपके बिलीफ सिस्टम में फिट होगा ना. बिलीफ सिस्टम्स को तो रिप्लेस कर रहे हैं ना. सो और उसमें भी क्या बिलीफ सिस्टम ये है कि मैं हूँ ही स्टेबल, मुझे स्टेबल होना नहीं है, मैं हूँ ही स्टेबल. तो पहले मुझे सिर्फ किसका ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है और अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करना है कि दूसरे मेरे अनुसार
0: काम नहीं करेंगे.
1: करने वाले नहीं है, चलने वाले नहीं है, व्यवहार करने वाले
0: कभी भी कुछ भी
1: नहीं.
0: हो सकता है. यू नो, अगेन इट मीन्स दैट व्हेनेवर द सिचुएशन विल कम, दिस बिलीफ सिस्टम शुड पॉप अप ऑन द स्क्रीन, ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन, आई एम स्टेबल.
1: It is. That's most important. That's the only thing which helps me cross every scene. क्योंकि होता क्या, expectations रखना means क्या, मैं अपनी सोच के अनुसार expectations रखती हूँ. See, expectations सारी मेरी एक पर्टिकुलर सोच है, मेरे एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम है और मैं समझती हूँ सब लोगों को वही बिलीफ सिस्टम से चलना चाहिए क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम
0: ठीक है.
1: ठीक है. क्योंकि मैं तो ठीक ही हूँ ना, मेरा गलत होना तो वो तो आई नेवर थॉट अबाउट इट. तो मैं ठीक हूँ, मेरा बिलीफ ठीक है, तो सबको उसी बिलीफ के अनुसार चलना चाहिए. हाउ इज दिस एवर पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है. तो हम ही असंभव चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एवरीवन शुड गो अकॉर्डिंग टू माय बिलीफ और फिर हम इम्पॉसिबल एक्सपेक्ट करके जब वो नहीं पूरा होता तो हम डिस्टर्ब होते और जैसे ही हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती फिर हम डिस्टर्ब होते,
0: दिस इज मेजर
1: फिर
0: फैक्टर.
1: हम जजमेंटल भी होते हैं क्योंकि
0: ओह यस.
1: यानी सारे कितनी इंटीग्रेटेड हो जाते हैं चीज. मैंने एक्सपेक्टेशन रखी कि आप मुझसे स्वीटली बात करेंगे, अब आपने नहीं की ड्यू टू सो मेनी फैक्टर्स. आज आपका मूड ठीक नहीं है, आज आपका मन नहीं
0: या
1: किया,
0: हो सकता है मेरे मन में कोई और
1: कुछ
0: बात
1: और
0: आपसे
1: बात,
0: जुड़ी, किसी ने कुछ कहा है मुझे आपके लिए,
1: कुछ
0: यू नो,
1: भी हो
0: कुछ भी हो
1: सकता,
0: सकता
1: कुछ
0: है.
1: भी हो सकता है. लेकिन मैंने एक्सपेक्ट क्या किया था कि आप मेरे से दिस पर्टिकुलर व्यवहार से करेंगे, आपने नहीं किया, तुरंत मैं क्या हो जाऊंगी, आपके प्रति जजमेंटल, आपके प्रति क्रिटिकल. फिर वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा, वाणी में आएगा, फिर वो सिर्फ आपको नहीं बोलूंगी और
0: सब जगह
1: सो मच
0: और पूरा
1: जस्ट
0: टाइम
1: गोस.
0: रहेगा जब तक, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल आएगा जब तक मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर दूंगी, तब तक वो मेरे साथ थॉट रहता रहेगा.
1: क्योंकि हमने जजमेंट क्या पास करनी है. सी मेरा बिलीफ ये है, आपने वो बिलीफ फॉलो नहीं किया तो मैंने जजमेंट सिर्फ एक ही तो पास करनी है कि आप गलत हैं. वो तो मुझे पहले से ही पता था. सी द मिनट समवन इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू माई बिलीफ, माई थॉट, माई वे ऑफ वर्किंग, मुझे जजमेंट सिर्फ यही पास करना है, मैं सही हूँ, दूसरे
0: गलत
1: गलत
0: है.
1: है. यही तो हम सारा दिन कर रहे हैं. आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, जैसा आप बोल रहे हो वो रॉन्ग, जैसा आप काम कर रहे हो वो. वी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट के हर एक का काम करने का अपना अपना तरीका है, हर एक अपने एप्टीट्यूड से, अपने स्किल से, अपनी सिंसियरिटी लेवल से. सी इवन सिंसियरिटी, हमारी वैल्यूज भी कई बार हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है जब हम उसको एक्सपेक्टेशन के साथ जोड़ते हैं. सपोज वन पर्टिकुलर पर्सन ऑफिस में बहुत सिंसियर है, वो दिन रात काम करता है, सिंसियरिटी उसकी वैल्यू है, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी उसकी वैल्यू है, वो कभी हमेशा सच बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता. लेकिन फिर वो ये एक्सपेक्ट करते
0: कि सब लोग भी
1: कि
0: सच
1: सब लोग
0: बोलते
1: ऐसे होंगे. अब नाउ वो ही वैल्यू फिर उसके लिए डिस्टर्बेंस का कारण बन जाती, क्योंकि जब भी कोई उतनी सिंसियरिटी से काम नहीं करेगा, जब भी कोई उतनी ऑनेस्टी से बिहेव नहीं करेगा, जो कि होने वाला बिकॉज एवरी वन इज डिफरेंट, तो आई एम गोइंग टू गो लाइक दिस. सो एक्सपेक्टेशन मीन्स क्या, जैसे हम हैं
0: वैसे होना
1: जैसी
0: चाहिए.
1: हमारी सोच है सारे लोग वैसे ही चलने वाले हैं, ये कभी नहीं होना होने वाला है. सो द सूनर वी कैन लर्न, यू नो दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग, कि जैसे ही आप डिस्टर्ब होते हैं चेक करें कि किससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आज. यू नो अगर हम एक चीज ट्राई करें, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, कि अगर आपको कोई बात लगती कि वो सही है, यू आर वेरी श्योर कि ये सही है, शेयर इट दूसरे के साथ, आप शेयर करें, बच्चे के साथ शेयर करें, लेकिन सिर्फ अपने आप को ये याद दिला दें कि अगर वो पूरा नहीं कर पाएगा मैं हर्ट नहीं होंगी, बस इतना रखना है.
0: पूरा भी नहीं, रिजेक्ट भी कंप्लीटली करते,
1: मतलब उसको वो नहीं अगर अपने जीवन में करते, मैं हर्ट नहीं हूँ।

0: तो उससे क्या होगा, आप अपनी वो राइट बात आप कहते जाओ, बताते जाओ, विदाउट गेटिंग हर्ट, डिजेक्टेड, धीरे धीरे यू विल फाइंड द अदर पर्सन एक्सेप्टिंग व्हाट यू हैव टू से. क्यों वो एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि पहले हमने उनको एक्सेप्ट किया. तो जैसे ही हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे तो धीरे धीरे वो भी फिर हमें एक्सेप्ट कर लेंगे. और वो जो बात हम उन्हें कह रहे, दिस इज कॉल्ड एम्पावरमेंट. दूसरे को एक्सेप्ट करना मतलब एक्सेप्टेंस की एनर्जी होती है, एम्पावरिंग एनर्जी, सशक्त करने. और रिजेक्शन की एनर्जी वो दूसरे को और नीचे, और दूसरा परे हट जाता है, मुझे करना ही नहीं है, मेरे से नहीं होगा, आई कैन डू व्हाट यू वांट मी टू डू. बट इफ यू गिव दिस एक्सेप्टेंस एनर्जी, उनके अंदर वो ताकत आ जाती है, वो करके दिखाएंगे व्हाट यू वांट देम टू डू. सो एक्सपेक्टेशंस, यस, वेरी डिफिकल्ट एकदम से लेट गो करना, लेकिन ये तो ध्यान रख सकते कि
1: मेरे
0: डिस्टर्ब
1: हाँ,
0: नहीं होना है. सबसे पहले एक्सपेक्टेशन पहले पूरी करनी है अपनी वाली,
1: अपने आप से. एक्चुअली इट्स अमेजिंग, यू नो, हम जैसे बिलीफ सिस्टम्स पर काम करते आ रहे हैं, वैसे ही ये मेजर छोटी छोटी बातों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, कि वही नल में पानी नहीं आया, या बच्चा ऐसे ही बिहेव करेगा, या मेरा सबॉर्डिनेट जो है ही हैज टू परफॉर्म दिस वे, दैट इज वो प्रैक्टिकल हो सकता है. यू नो, अगेन ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर होता है कि मेरा ऑफिस है, मेरा प्रोजेक्ट है, परफॉर्मेंस हैज टू बी दिस वे. तो उसमें फिर हम क्या अपने आप को लॉजिक दे सकते हैं?
0: उसमें हम ये कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं या हमारे जूनियर्स भी अगर हैं, हर एक का अपना अपना एप्टीट्यूड है, स्किल है. मैं सीनियर पोजीशन पर अगर हूँ तो मैं सीनियर पर इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे अंदर कोई विशेषता है. लेकिन आपके सारे टैलेंट्स और स्किल्स के साथ एक सीनियर के अंदर जो सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि उनके साथ या उनके अंडर काम करने वाले लोगों की क्वालिटी को, टैलेंट को बढ़ाना. लेकिन हम सोचते नहीं जो मेरा स्किल है उनका भी ऑटोमेटिकली उसी लेवल का होना चाहिए. दैट्स नॉट नेसेसरी पॉसिबल. एंड कई बार ये भी हो सकता कि जो हमारे जूनियर हैं उनको कोई ऐसी चीज़, उनका स्किल हमारे से भी बेटर हो सकता, लेकिन अगर हमने उनको कहा कि आप मेरा वाला तरीका ही करो, तो कई बार हम दूसरे की क्रिएटिविटी को डैम्पन कर देते हैं और वर्क एफिशिएंसी पर भी उसका
1: यही बात है कि जितने भी हम देखते हैं एग्जांपल्स जहां बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए, वो तभी हो पाया जब टीम ने लीडर की विजन को अपनी विजन बनाया. यू नो, नाउ इवन इफ देयर इज समबडी जो नहीं उसे एक्सेप्ट कर पा रहा या नहीं उसको मीट कर पा रहा, इट्स परफेक्टली फाइन. यू नो,
0: एंड व्हेन आई रिमेन हैप्पी, वो जो नहीं मीट कर पा रहा वो भी कर लेगा. क्योंकि हम उनको वो ताकत, ये हम अगर याद रखें, ये बहुत बड़ा मंत्र है. यू नो, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल विद विच वी कैन एम्पावर पीपल अराउंड अस. माय नॉट गेटिंग डिस्टर्ब्ड एम्पावर्स अदर्स, बिकॉज आई एक्सेप्ट देम, दे एक्सेप्ट देमसेल्व्स, एंड देन दे एक्सेप्ट मी. दैट्स द वे एनर्जी फ्लोज.
1: ब्यूटिफुल. इनफैक्ट दिस इज अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम विच वी हैव टू स्टार्ट इंटीग्रेटिंग. अपना सुबह का पहला कागज पे जो पहला लाइन हम लिखेंगे वो यही कि आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ टू रिमेन हैप्पी, यू नो, नॉट टू गेट डिस्टर्ब्ड. ये अगर हम पहला, तो हमारा इंडेक्स फिर नहीं होने वाला जब तक हमें ये याद रहेगा. सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच.
0: ओम शांति.
1: और अपने ओम शांति अपने सभी दर्शकों से भी अब विदा लेते हैं. लेकिन बार बार यही बात आती है कि जब देखना शुरू करते हैं, एक्चुअली इट्स अमेजिंग, यू नो, जब हमने देखना शुरू किया, जब अपने काम करना शुरू कर दिया, अपने पर समझा, उसको इम्प्लीमेंट करने लग गए, तो प्रोजेक्ट जो है वो ज़रूर सक्सेसफुल हो रहा है. तो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स का जो प्रोजेक्ट है वो इन दिनों खूब तेज़ी पर है. वो एक स्टेबिलिटी को, जिसको हम जिस लेवल पर लेकर आना चाहते हैं, वहाँ पर बिल्कुल पहुँचता जा रहा है. लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी बातें अगर अभी भी हैं जो उसको डिस्टर्ब करती हैं, आपका बिल्कुल स्वागत करते हैं. आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01244-266-7000, 99993-44-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. Awakening with Brahma Kumaris में आज इतना ही. लेकिन इस श्रृंखला में जो हमने समझा है, जो जाना है, जिसे इम्प्लीमेंट किया है, इसको और सुदृढ़ करते रहेंगे आने वाली कड़ियों में. अभी विदा लेते हैं. ओम शांति.

18वीं सदी का सुधार युग। उस युग के प्रमुख समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस आदि। उन्होंने अपने अपने प्रयासों से समाज कल्याण का बीड़ा उठाया था। इन महापुरुषों के पदचिन्हों का अनुसरण कर स्वामी विवेकानंद ने समाज और देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। पश्चिमी देशों को भारत की एक नई पहचान मिली। भारतीय ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता से उनका परिचय हुआ और सारा विश्व इस तरुण सन्यासी के प्रति आकर्षित हो गया।

0: आपने 19वीं सदी के भारत और मुख्यतः बंगाल के बारे में भी जाना। हमने सुना वो कितना अशांत युग था, समाज दिशाहीन तथा अंधकारमय था। कुछ समाज सुधारकों ने समाज को कुछ हद तक सुधारा, दिशा दी, परंतु सदियों की रूढ़िवादिता, धर्मांधता तथा कदाचार पर संपूर्ण रूप से विजय पाना संभव न था।
1: उसी अशांत कालखंड में स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव हुआ। अपने ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति एवं वैदांतिक राष्ट्रवाद से उन्होंने समूचे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का दिल जीत लिया। दिशाहीन भारत को एक सच्चा पथ प्रदर्शक मिला। जाति, प्रांत और भाषाई अंतर को भुलाकर भारतवासियों ने उन्हें अपने प्रेरणा पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा से लोग मुग्ध हुए।
0: ऐसे दिव्य महापुरुषों की जीवन कथा बहुत ही रोचक है। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने हजार वर्षों का काम कर दिखलाया था। इतने सारे गुणों से धनी स्वामी विवेकानंद को संस्कार अपने परिवार से मिले थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी, अतः विवेकानंद को जानने से पहले उनके परिवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता नगरी के उत्तरी भाग में सिमुलिया या सिमला मोहल्ले में गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर दत्त परिवार का विशाल भवन अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। आज भी उस भवन का जीर्ण द्वार अतीत वैभव का साक्षी बना खड़ा है। दत्त वंश का ऐश्वर्य और ख्याति उनके 12 महीने के 13 उत्सव पर्व का आडंबर उस समय के कलकत्ता के धनी समाज में चर्चा का विषय रहा।
1: कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील राममोहन दत्त के समय में सिमुलिया के दत्तों ने नगर में काफी प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। राममोहन दत्त के पुत्र दुर्गाचरण ने उस समय की प्रथानुसार संस्कृत तथा फारसी भाषा में शिक्षा प्राप्त की और राजभाषा अंग्रेजी भी सीखी। उन्होंने भी वकालत प्रारंभ कर दी, परंतु पिता जैसी धनोपार्जन की प्रवृत्ति उनमें न थी। तत्कालीन धनी संतानों के समान नवीन नागरिक सभ्यता के भोग विलास भी उन्हें आकर्षित न कर सके।
0: ये धर्मानुरागी युवक अवसर और मौका पाते ही धर्म शास्त्रों की चर्चा तथा सत्संग किया करता था। उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए हुए हिंदी भाषी वेदांती साधुओं से प्रभावित होकर दुर्गाचरण ने 25 वर्ष की उम्र में ही सारा ऐश्वर्य और सम्मान त्याग कर संन्यास ले लिया।
1: सन्यासियों के नियमानुसार 12 वर्ष के बाद दुर्गाचरण एक बार अपने जन्म स्थान का दर्शन करने आए थे और अपने एकमात्र पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद दे गए थे। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनके आगमन के एक वर्ष पहले ही उनकी पत्नी यानी विश्वनाथ की माता का निधन हो गया था। सन्यासी पुत्र विश्वनाथ ही सन्यासी विवेकानंद के पिता थे।
0: विश्वनाथ ने अपने दादा राममोहन का अनुसरण कर वकालत करना प्रारंभ किया। वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वकालत में व्यस्त रहते हुए भी अध्ययन में उनका प्रबल अनुराग था। वे फारसी जानते थे, हाफिज की कविताएं पढ़ते थे, अंग्रेजी साहित्य और इतिहास आदि पढ़ने के कारण धार्मिक कट्टरता उनमें ना थी। कई ऊंचे खानदान के मुस्लिम उनके मुवक्किल थे तथा लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर आदि स्थानों की यात्रा करने के कारण वे उस समय के अनेक खानदानी मुस्लिम परिवारों के संपर्क में आ चुके थे, अतः वे उनके रीति रिवाजों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनकी पाबंदी भी करते थे। बाइबल के अध्ययन के कारण वे ईसाई धर्म के भी प्रेमी थे, अर्थात धर्म, ईश्वर आदि के बारे में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वे काफी धनोपार्जन करते थे और खर्च भी वैसा ही करते थे। रिश्तेदारों दोस्तों का आदर सत्कार करना तथा ठाट बाट से रहना वे पसंद करते थे। उनके घर में अनेक आश्रित पलते थे और उस विशाल भवन में किसी चीज की कमी ना थी।
1: परंतु विश्वनाथ की पत्नी भुवनेश्वरी देवी एक पारंपरिक महिला थी। इस बुद्धिमती कुशल गृहिणी की देखरेख में उनके विराट परिवार के सभी कार्य बड़ी कुशलता से संपन्न होते थे। वे बंगला पढ़ना लिखना भली भांति जानती थी। रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत आदि का नियमित पाठ करती और साथ ही अपने पति पुत्र के साथ चर्चा करके तत्कालीन विचारधारा से भी परिचित रहती थी। आस पड़ोस के लोग उन्हें श्रद्धा करते थे। वो मीठा बोलने वाली गंभीर धर्म परायणा महिला प्रतिदिन शिव पूजा करती थी।
0: भुवनेश्वरी देवी के मन में एक दुख था। दो कन्याओं की माता तो वे थीं, पर उनका कोई पुत्र ना था। पुत्र मुख देखने की लालसा ने उन्हें धीरे धीरे बहुत ही व्याकुल कर डाला। वे प्रतिदिन सुबह शाम शिव मंदिर में प्रार्थना करती और शिव को संतुष्ट करने के लिए कठोर व्रतों का पालन करती।

कैलाशपति भुजंगेश्वराय नमः। हे देवाधिदेव, मैं भक्ति पूर्वक तन मन से तुम्हारी सेवा में रत हूँ। सभी कठोर व्रतों का नियम पूर्वक पालन करती हूँ। तुमसे आज्ञा या आशीर्वाद लिए बिना मैं कोई भी काम नहीं करती प्रभु। फिर तुम्हारी कृपा कब होगी? कब आप प्रसन्न होंगे? कब मेरी गोद में एक पुत्र आएगा प्रभु? कब तुम्हारी दया होगी? बोलो बोलो ना, कब होगी दया? कब कब होगी तुम्हारी दया?

0: इतने व्रत उपवास पूजा अर्चना के बाद भी उनके मन को शांति न हुई। शिव को और भी अधिक तुष्ट करने के लिए उन्होंने काशी में रहने वाली एक रिश्तेदार महिला को पत्र लिखा।
1: आपको तो मालूम है कि मैं शिव की पूजा नियमित रूप से करती हूँ, उनके नाम का व्रत उपवास भी करती हूँ, पर उनकी कृपा मुझ पर आज तक नहीं हुई। मेरी पुत्र कामना अधूरी ही रह गई। आप तो भाग्यवती हैं, शिव की नगरी में ही निवास करती हैं। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप हर दिन मेरी ओर से बाबा विश्वेश्वर के मंदिर में पुत्र कामना करते हुए पूजा एवं होम यज्ञ आदि की व्यवस्था कर दें। मुझे आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगी।
2: ये जानकर कि उनकी इच्छा के अनुसार पूजा पाठ हो रहा है, माता भुवनेश्वरी प्रफुल्लित और आश्वस्त हुई। वे शिव अर्चना में और भी ज्यादा डूब गईं। ग्रह देवता शिव मंदिर में ही उनका अधिकतर समय व्यतीत होने लगा।
0: एक दिन प्रातः काल शिव अर्चना के बाद वे ध्यान मग्न हो गईं। परिवार के लोगों ने और दास दासियों ने उन्हें कई बार आवाज दी, पर वे सब कुछ भूलकर बेसुध बैठी रहीं। सारा दिन बीत गया, सांझ हो आई। पति विश्वनाथ के अदालत से लौटने पर उन्हें ये समाचार मिला। वे पत्नी से बेहद प्यार करते थे, व्याकुल होकर पूजा कक्ष में आए और भुवनेश्वरी को आवाज दी।
3: भुवन, ओ भुवन, भुवन, क्या हो गया है तुम्हें? सुना है सुबह से यहां ऐसी ही बैठी हो, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भुवन, तुम सुन रही हो ना? मेरी ओर देखो, जवाब दो भुवन, भुवन।
0: भुवनेश्वरी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे वहीं पर थककर सो गईं। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें छूने या जगाने की। सूर्योदय के समय अचानक घर वालों की नींद खुली। उन्हें पूजा घर से घंटा बजने और मंत्रोच्चार की आवाज आई। सब दौड़ते हुए वहां जाकर एकत्रित हुए। भुवनेश्वरी होश में आ गई थी और जोर जोर से मंत्र पढ़कर शिव को प्रणाम कर रही थी।
1: हे शिव, हे शंकर, हे करुणामय, तुमने मुझे ये क्या दिखाया, क्या दिखाया? क्या ये निरा सपना था या सच का पूर्वाभास? कहो देव, कहो ना। अरे अरे, सुना तुमने? तुम लोगों ने सुना? मेरे इतने दिनों की तपस्या पूरी होने वाली है। हाँ हाँ, शिव ने मुझ पर दया की है। हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे प्रभु।
3: भुवन, भुवन, शांत हो जाओ, सब ठीक तो है ना? क्या देखा तुमने, कहो, इतनी खुश क्यों हो, कहो तो।
1: मैं क्या कहूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने ये कैसा सपना देखा? हाँ,
3: क्या देखा तुमने, कहो भुवन।
1: ओह, मैंने देखा तुषार धवल पर्वत श्रृंग से कैलाशपति शिव उतर कर आ रहे हैं। हाँ, और वो ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे, तुम्हारी कठोर तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा भुवनेश्वरी। और कहते कहते शिव एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर मेरी गोद में आ गए। हाँ हाँ, वो मेरी गोद में आ गए और मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ, सच। ओह, हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे शिव।
2: हे शिव, हे शंकर कहती हुई वे बारंबार माथा टेकती रहीं। परिवार वाले हतप्रभ रह गए।
0: उस दिन 1863 ईस्वी की 12 जनवरी थी, पौष संक्रांति का पुण्य प्रभात। शीत से ठिठुरते हुए नर नारी स्नान के लिए भागीरथी की ओर जा रहे थे। इसी समय सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33 और 33 सेकंड पर भुवनेश्वरी देवी ने विश्व विजयी पुत्र को जन्म दिया।

0: आनंद उल्लास और हर्ष से दत्त भवन मुखरित हो उठा। मंगल शंख बजने लगे। बंगाल के हर घर में पौष पर्व का आनंदोत्सव मनाया जा रहा था, मानो नवजात शिशु को सादर अभ्यर्थना करने प्रत्येक गृह प्रांगण मुखरित हो उठा।
1: नामकरण का दिन। बालक की आकृति बहुत कुछ उसके सन्यासी पितामह की तरह देखकर परिवार के कुछ लोगों ने शिशु का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा प्रकट की, परंतु माता ने अपने स्वप्न को स्मरण कर कहा,
2: जी इसका नाम शिव के नाम पर वीरेश्वर रखा जाए। ठीक है, वे ही तो शिशु का रूप धरकर मेरे घर आए हैं। ये मेरा शिव, मेरा शंभु, मेरा महेश और मेरा शंकर है, मेरा बच्चा।
0: सभी ने उनका कहना मान लिया। वे उसे वीरेश्वर से वीरे और अंततः बिले कहने लगे। अंत में अन्नप्राशन के समय बालक का नाम रखा गया नरेंद्रनाथ, और भविष्य में यह बालक नरेंद्रनाथ या नरेन नाम से ही परिचित हुआ।
1: बचपन में नरेंद्रनाथ बहुत ही नटखट थे। उनके उधम से घरवाले हमेशा परेशान रहते थे। वे माँ को बहुत तंग करते थे। एक दिन बालक नरेन आंगन में दौड़ दौड़ कर माँ को सता रहा था।
2: बिले, अरे ओ बिले, आ ना इधर आ, बात सुन मेरी। बिले, ओहो आना, कपड़े बदल ले। ओहो
3: नहीं नहीं बदलूंगा कपड़े, लो पकड़ो मुझे।
2: अरे सुन ना,
3: नहीं पकड़ पाई ना, मैं अभी पेड़ पर चढ़ने जा रहा हूँ, नहीं आऊंगा तुम्हारे पास।
2: ठहर, पकड़ती हूँ तुझे। बस ये पकड़ लिया। बोल अब कहाँ जाएगा। हाँ ठहर ठहर, मैं मजा चखाती हूँ। नहीं सुनेगा ना मेरी बात। हाँ नहीं सुनेगा, चल चल आ इधर आ, ये इधर आ, इधर आ, ये ले ये ले, ये शिव, ओ शिव, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, ले। अब तेरा माथा कुछ ठंडा हुआ ना, चल चल अब अंदर चल, चल बेटा सर पोंछ दू, फिर कपड़े बदल लेना। ओह शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर।
1: पिता विश्वनाथ बरामदे में खड़े होकर माँ बेटे का ये नाटक देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा,
4: भुवन तुम क्यों हमेशा बिले के पीछे पड़ी रहती हो, अरे खेलने दो ना उसे। देखो ना, नाहक उसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया, अगर उसे जुखाम हो गया तो जाओ जल्दी से पहुंचो उसका सर।
2: हाँ हाँ, तुम्हें तो हमेशा मेरी ही गलती दिखाई देती है, बेटे की शरारत तुम्हें दिखती ही नहीं। अरे देखो तो, दौड़ा दौड़ा कर मेरा तो दम निकाल दिया, और उसे भिगोने में देखो ना, ये देखो मैं पूरी तरह भीग गई। अरे बिले चल ना, चल जल्दी चल चल।
4: पर तुमने दोबारा उसे नहलाया क्यों, और वो भी ठंडे पानी से।
2: क्या आप नहीं जानते कि आशुतोष शिव जलाभिषेक से ही संतुष्ट होते हैं, और मेरा बिले भी तो शिव का ही अंश है, इसलिए जब मैं इसे किसी भी तरह से शांत नहीं कर पाती तो ठंडा पानी डालकर शिव शिव की जाप करती हूँ, और ये भी शांत हो जाता है।
4: तुम माँ बेटे की महिमा अपरंपार है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे बच्चा है अभी, शरारत तो करेगा ही।
2: ए देखो जी, वकालत करते हो उसी को संभालो, हम माँ बेटे के बीच ना आना, ठीक है। ए, ए, ए, अरे अरे अब फिर भाग गया। अरे देखो तो, ओहो फिर भाग गया बिले।
4: लो संभालो अब।
2: ओ माँ गो माँ, मैं तो इसकी शरारतों से तंग आ गई हूँ। ओ अरे अरे, ओ राधा शामू, अरे देख तो किधर भाग गया। वो भाग रहा है, वो जा पकड़ लिया ना, ले आ इधर ले आ। मांगो माँ, महादेव शिव ने स्वयं ना आकर जाने कहां से एक भूत को भेज दिया है, सबको परेशान कर रखा है। ओह अरे तू तो फिर से रोने लगा, देखा देखा जी अपने लाडले की करामत। हाँ हे देख देख बिले, अगर तू ज्यादा उधम मचाएगा ना तो महादेव तुझे कैलाश में नहीं आने देंगे। हाँ
3: सच कह रही हो ना माँ, शिव जी मुझे कैलाश नहीं आने देंगे तो मैं नंदी बैल की सवारी कैसे करूंगा।
2: अच्छा बच्चा बनो बेटा, तो शिव जी तुझे खुद वहां ले जाएंगे, खूब प्यार करेंगे, समझा। अच्छा अच्छा अब चल, तो चल भीगे कपड़े बदल ले। हाँ चल चल बेटा चल चल, आजा चल चल।
4: तुम दोनों माँ बेटे की बातें तुम दोनों ही जानो, और जाने तुम्हारे शिव जी। भाई मैं तो चला। नरेंद्रनाथ सबके प्रिय थे, मोहल्ले के धनी निर्धन सभी परिवारों के साथ उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया था। यदि उनके परिचितों में से किसी लड़के के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती तो उसे सांत्वना देने वे ही पहले रहते थे। हर घर में आना जाना उनके परिवार जनों को पसंद ना था। एक दिन
5: ए ए ए बिले, क्यों रे बिले, तू कहाँ गया था, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही थी।
3: अरे मैं तो देवू के घर गया था, आपको मालूम नहीं पड़ा क्या, आज देवू के दादाजी गुजर गए। देवू बहुत रो रहा था, उसी के साथ बैठा था।
5: हे भगवान, इस लड़के को जात पात का कोई ध्यान नहीं है, तूने देवू के दादाजी के शव को छुआ तो नहीं। हे ईश्वर,
3: छुआ नहीं, सब दादाजी को आखिरी बार प्रणाम कर रहे थे, सो मैंने भी किया।
5: तूने प्रणाम किया, चल आज तेरी अच्छी पिटाई होगी, चल माँ के पास।
3: आप मुझे डांट क्यों रहे हैं, देवू मेरा दोस्त है, उसके दादाजी को मैं भी दादाजी कहता था, और दादाजी को प्रणाम करने में क्या बुराई है, माँ ही तो कहती है बड़ों का आदर करना चाहिए।
5: अरे अरे अरे अरे अरे, इस मलेच्छु को कौन समझाए, चल चल तू तो अंदर चल, फिर देखना क्या होता है तेरा। ए ए ए, ए किसी चीज को छूना मत, पहले नहा ले, चल पहले नहा।
3: ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, आपको छू दिया, क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, आप तो वैसे ही हैं।
5: हाय हाय हाय हाय हाय, ये क्या कर दिया, मैं तो नहा धोकर घर से बाहर जा रहा था, छू दिया ना, अब फिर से नहाना पड़ेगा, राम राम राम।
3: तो जाइए फिर से नहाइए।
5: राम राम राम राम राम।
0: और नरेंद्र हंसते हुए अंदर चले गए। चाचा जी के गुस्से का अंदाजा तो आप खुद लगा सकते हैं।

0: नरेंद्र बचपन से ही बहुत हाजिर जवाब और शरारती थे, पर उनकी बाल सुलभ शरारतों से अधिकतर लोगों का मनोरंजन होता था। उनकी मजेदार बोलचाल और मनगढ़ंत किस्से कहानियों को सुनकर गंभीर स्वभाव वाले बड़े बूढ़े भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उनके दोस्त तो नरेंद्र से कहानियां सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, और नरेंद्र भी मौका मिलते ही कहीं भी मंडली जमा कर बैठ जाते और दोस्तों को तरह तरह की कहानियां सुनाते। रामायण महाभारत की कथा कहानियां तो सुनाते ही थे, साथ ही अलिफ लैला की कहानियां, ईसप की नीति कथाएं तथा देश विदेश की परिकथाएं भी सुनाया करते थे।
1: नरेंद्र को किसी प्रकार का संकोच न था। अगर कोई कहानी याद न आती तो मनगढ़ंत पात्रों की काल्पनिक कहानियां दोस्तों को सुनाया करते। उनकी काल्पनिक कहानियां भी इतनी मजेदार हुआ करती थीं कि दोस्त यह समझकर भी कि नरेंद्र झूठी कहानियां सुना रहे हैं घंटों मंत्रमुग्ध हो सुनते रहते थे। बचपन से ही उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी।
0: जीवन के आरंभ में ही देखा गया था कि अपने हम उम्र साथियों के साथ झुंड बनाकर क्रीड़ा कौतुक करते समय नरेंद्र ही इन सब आयोजनों के नेता होते। नेतृत्व सुलभ गुण तब से ही उनके चरित्र में प्रस्फुटित होकर धीरे धीरे समुचित रूप धारण कर रहा था।
1: उन दिनों पाठशाला में मकर संक्रांति के दिन गंगा की वंदना के गीत गाकर गंगा के तट पर जाकर पूजा अर्चना करने की प्रथा थी। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ बाबू मकर संक्रांति के दिन गुरुजी एवं छात्रों को नई धोती कुर्ता दिया करते थे, एवं गुरुजी छात्रों को गाजे बाजे के साथ गंगा पूजा कर आने की अनुमति देते थे।
0: लौट कर आने पर प्रथा अनुसार घर पर बनी मिठाइयां खाने को मिलती थी। नरेंद्र ने पिता से छात्रों के साथ गंगा पूजन की अनुमति मांगी। बाजा गाजा और पताका आदि की व्यवस्था पिता के खर्चे से सहज ही हो गई। अतः गंगा की महिमा गाते हुए बच्चे जुलूस बनाकर गंगा तट पहुंचे। वहां केले के पेड़ के छिलकों से नाव बनाकर उनमें दिया जलाकर रख दिया गया और फूल मालाओं से सजाकर नावों को गंगा जल में बहा दिया गया।
1: छोटे छोटे नाव धीर गति से गंगा में बहने लगी। संध्या के झुरमुट अंधेरे में जगमगाती हुई नाव दियों के साथ साथ धीरे धीरे लहरों के साथ झूमती हुई सागर की ओर बढ़ चली। बच्चे ढोल मंजीरों के साथ गाते रहे।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापियादास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वरा संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: श्रोतेहोतच आपण युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद ऐकलात। हा कार्यक्रम स्वराज संस्थान संचालनालय यांच्या सहकार्याने विद्यावाणी सामुदायिक रेडिओवरून प्रसारित करण्यात आला। ऐकत रहा विद्यावाणी 107.4 FM।